हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026। सवेरे के 5:58:40 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 6 बजने को है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक

0: क्षेत्रीय और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। सुप्रभात, अभिनंदन सभी श्रोताओं का कार्यक्रम वंदना में। श्रोताओं, श्री राम की भक्ति, सेवा, शक्ति और समर्पण का दूसरा नाम है पवन पुत्र श्री हनुमान, जिनके हृदय में हर पल श्री राम और माता सीता का वास है। आइए इसी अटूट भक्ति और श्रद्धा के साथ नमन करते हुए प्रातः मंगल बेला के साथ शुभारंभ करते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम का और सुनते हैं अनूप जलोटा के मधुर स्वर में ये भक्ति रचना।
3: चीर के छाती बोले अपनी पवन।

श्रोताओ, राम का नाम मन को शांति, आत्मबल और मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है और प्रभु श्री राम का नाम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब मन, वचन और कर्म में प्रभु श्री

राम का स्मरण बस जाए तो जीवन स्वयं पावन हो उठता है। आइए आप और हम सब मिलकर इस पावन भाव को मन में उतारें और लीन हो जाएं भक्ति के सागर में।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय श्रोता सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, सच्ची शरण वही है जहां मन को शांति मिले, विश्वास मिले और आत्मा को प्रभु का सानिध्य। भय, मोह और अहंकार त्याग कर प्रभु की शरण चलें, क्योंकि प्रभु की शरण ही जीवन का सबसे सुरक्षित आश्रय है। प्रभु की शरण ही वो दिव्य धाम है जो परमानंद की अनुभूति करा देता है।

जब दिल में इश्क के रसूल की शमा रोशन होती है तो ज़िंदगी को सुकून, रहमत और हिदायत की नई मंजिलें मिलती हैं। आइए अकीकत और मोहब्बत से सराबोर इस खूबसूरत नात को सुनते हैं, मोहम्मद सईद नज़ा कव्वाल और साथियों की पुरअसर आवाज़ में।

भूल तो इंसान से होती ही है और जाने अनजाने में होती ही रहती है, लेकिन उसे स्वीकार कर क्षमा मांगना ही सच्ची भक्ति का प्रथम चरण है। आइए श्रद्धा और विनम्रता के साथ कर्म फल के अधिष्ठात्रा भगवान शनिदेव की आराधना करें और कृपा पाएं।

और श्रोताओं, इसी भक्ति रचना के साथ ही आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे की 6:30 और लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। गायक कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

भरत अपनी माता कैकेयी के कठोर आचरण से क्षुब्ध होकर आत्मग्लानि की आग में जल रहे हैं। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोख से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती। मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें, कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झूठा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानि की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कल्पलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर थुनते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भव्य प्रस्तुति श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। समय सवेरे के 6:40 और लीजिए सुनिएगा आज का चिंतन।
1: दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत मानववाद है। दुनिया के तमाम सारे मनुष्यों को समभाव से देखना चाहिए। मानव मानव पहले है और उसके बाद राजनीतिक, अर्थशास्त्री अथवा वैज्ञानिक। दुनिया का सबसे बड़ा समाजवाद यही है। संपूर्ण दुनिया से वर्ग, जाति आदि परंपरावादी व्यवस्था को समाप्त करके संपूर्ण दुनिया एक ऐसे समाज की स्थापना में रत हो जाए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता, अधिक समानता, अधिक न्याय, अधिक सुरक्षा और उच्चतर जीवन स्तर निर्माण

0: मदद करने का अवसर प्राप्त हो। मेरा उद्देश्य नैतिक पूर्ण है, अतः उसकी प्राप्ति के निमित्त अपनाए जाने वाले सभी साधन नैतिक हैं। ऐसे नैतिकवादियों पर विश्वास करना उचित नहीं जो स्वयं शराब पिए और अन्य को जल पीने का आदेश दें। मानवता तथा उत्तमता के सिद्धांत ऐसी ही बातें हैं जिन पर कोई विवाद नहीं किया जा सकता। हम धर्म और विज्ञान के समन्वय से युग की महान सेवा कर सकते हैं, साथ ही वैज्ञानिकता एवं तार्किक विवेचना में भी समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। इससे जीवन में स्पंदन, चेतना और उत्साह भरता है। इन सभी से ऐसे स्वर्ग की कल्पना की जा सकती है जो स्वयं पृथ्वी पर है। इस प्रकार धर्म का नवीन स्तर तथा मुक्ति का आनंदमय मार्ग सुस्थिर किया जा सकता है। मनुष्य का जीवन उनकी चेतना से निर्धारित न होकर सामाजिक जीवन से निर्धारित होना चाहिए। उसी से चेतना का निर्माण होता है। इस प्रकार मनुष्यों को चेतना उनके अस्तित्व का निश्चय नहीं करती, प्रत्युत उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना का निश्चयन करता है। अतः समाज व्यक्ति से ऊपर है। विश्व निरंतर गतिशील है। उसकी कोई भी वस्तु कभी भी स्थिरता व अपरिवर्तनशीलता की स्थिति में नहीं रहती, वरन सदैव बदलती रहती है। मानव समाज सदा से बदलता आया है। वो जो कल था आज नहीं है, जो आज है वो भविष्य में नहीं रहेगा। सामाजिक परिवर्तन का ये परिवर्तन कभी धीरे धीरे हुआ है और कभी शीघ्रता से हुआ है। ये कभी गुणात्मक होता है तो कभी भावात्मक। इस प्रकार प्रकृति अथवा जगत, जिसमें मानव समाज भी शामिल है, में पूर्णतः पृथक और स्वतंत्र सत्ता रखने वाली वस्तुएं नहीं होती हैं। अर्थात ये संसार वस्तुओं का या दृश्यों का केवल जमघट नहीं होता, वरन एक ऐसी सुसंगठित एवं एकीकृत संपूर्णता होता है जिसमें वस्तुएं, दृश्य इत्यादि एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे द्वारा निश्चित होते हैं। दुनिया का निरंतर विकास ये कहता है कि भौतिक तत्व अथवा वो तत्व जिसमें चेतना नहीं होती, उस तत्व से पहले ही कहीं विद्यमान था, जिसे विचार तत्व या ऐसा तत्व कहा जाता है जिसमें चेतना होती है। उसका अर्थ ये भी होता है कि बाह्य सत्य मस्तिष्क में स्वतंत्र रूप में स्थापित रहता है। इसका तात्पर्य ये भी होता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों की कोई पृथक सत्ता नहीं होती। वे बाहरी वस्तुओं के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रतिबिंबों की भांति होती है। इस प्रकार उनकी उत्पत्ति बाह्य सत्य से होती है। अतः ये सिद्ध हो जाता है कि भौतिक तत्व ही वास्तविक एवं प्राथमिक सत्य होता है। मानव मस्तिष्क, आत्मा, चेतना आदि सब इस तत्व के अतिविकसित रूप होते हैं। मानव में चेतना अथवा गति भौतिक तत्वों की विशेष व्यवस्था के कारण उत्पन्न हो जाती है। जैसे घड़ी के पुर्जों को एक विशेष व्यवस्था में रख देने से इंजन में गति उत्पन्न हो जाती है।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे की 6:45 और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा, जिसमें आज आप सुनेंगे जगदीश चंद्र वर्मा के वर्मा से ये काव्य पाठ।
2: कविता का शीर्षक अनिश्चित देश बचाओ। अब सत्य निष्ठा पर चलो, सब देश को संभाल लो, मन आत्मा को शुद्ध कर निज देश को उबाल लो। विमुख होंगे कर्तव्य से तो देश होगा ये दुखी, चाहते हो अगर देश हित ईमान को अख्तियार लो। मार्ग सर्वहित का चलो, अब लोभ स्वार्थ त्याग दो, ओढ़ा है जिसने जुल्म का कपड़ा उसे उतार दो। अनर्थ न हो अब कभी आगे किसी के हाथ से, अंजाम बुरे का बुरा होता है ये स्वीकार लो। सत्य को सब सत्य कहो, सत्य को सब सत्य कहो, असत्य न कहो। चल रहे जो पाप अन्याय पर, अब उनके संग में न बहो। सोच कर अच्छा बुरा चलना होगा अब इस समय, अब देश के

देश में हर को सम्मान दो, होगा समझना राष्ट्र को हर धर्म से बड़ा। आज देश गलत सोच से खतरे में आ पड़ा, उबारना होगा हमें राष्ट्रभक्ति भाव से। सब स्वार्थों को त्याग कर भक्त भाव का संज्ञान दो, भ्रष्ट स्वार्थी लोगों ने आज हालत बिगाड़ दी। सत्ता रहे हम पर सदा ऐसी जुगाड़ की, मिलने दिया आजादी से न धर्म मजहब को। आओ न गलत बातों में राष्ट्रहित पर ध्यान दो, रहना है सबको साथ में सब प्यार से रहे। अब देश विरोधी धारा में आगे न कोई बहे, राष्ट्र प्रेम जिन में न लगे उनका न साथ दो। अब देश हित कर्मों को ही मिलकर अंजाम दो, कुरेदो नहीं जख्मों को भरने का काम हो, नफरत जगह निर्देश पर मरने का काम हो। कविता का शीर्षक है इंसान चला जाता है यादगार छोड़ जाता है, किसको पता है इसका कब स्वास्थ्य निकल जाए। हर जिंदगी हो ऐसी पीछे भी याद आए, हर आंख में हो आंसू जब भी चलो जहां से, मरने के बाद तुमको बुरा ना कोई कह पाए। अच्छों को याद करता हर कोई यह सुना है, दुख देने वाले जाकर ऊपर भी नरक पाए। जीवन हो सबका ऐसा निर्मल पवित्र जैसा, निकले जिधर को भी हम हर कोई सर झुकाए। हो सोच मानवता की पीड़ा न दे किसी को, दिखेगी स्वर्ग धरती जिस बैर घर मिट जाए। हो ज्ञान ये हरेक को उपकार मोक्ष साधन, अनमोल है ये जीवन बेकार न हो जाए। हर धर्म शिक्षा देता सत्कर्म सत धर्म की, दुष्कर्म पर चले जो कुदरत ने खुद मिटाए। आती है जहां सुनामी मारती है जुल्म गामी, किया है तबाह उनको जिन्होंने जुल्म ढाए। चलता है पाप पर जो भरता नतीजा है वो, कहता न धर्म कोई बुरा किसी का सोचो। जिस जिसने बुरा सोचा पनप कभी ना पाए, किसको पता है इसका कब स्वार्थ निकल जाए। कविता का शीर्षक सबके भले से भला होता है, किस्मत बदल जाएगी हर सर्वहित पर चलना सीख लो, जो चल रहे दिशा गलत उनको बदलना सीख लो। होगा बदलना अब हमें दुर्भाव को सद्भाव में, डूबते को देखकर उसको बचाना सीख लो। सेवा के कामों से ही अब साकार होंगे स्वप्न सब, देश हित अनहित की बातों को समझना सीख लो। जो जी रहे कष्टों में उनको तारना होगा हमें, जिस तरह से बन सके उबारना अब सीख लो। अभाव ग्रस्त बस्तियों में होगा अब जाना हमें, सहयोग और संस्कार से ऊपर उठाना सीख लो। किस्मत बदल जाएगी हर सर्वहित पर चलना सीख लो। शीर्षक है मीठे बोल से दुश्मन भी अपना बनता है, सच बोलो मुख से मधुर वचन, खुश होगा देखकर पूर्ण वतन। होगा कैसे यहाँ देश भला जब बोल रहा हर कटु वचन, हटते जा रहे मर्यादा से आज देश परेशान ज्यादा से। भीड़ बढ़ती जा रही आतंकी, अपने ही कर रहे गलत गमन चलना होगा अब सही कदम, उभरे न जिससे साप पदम। सौहार्द बनाकर करने हैं राष्ट्र सुख विकास के लिए हवन, सब बोलो मुख से मधुर वचन, खुश होगा देखकर पूर्ण वतन। कविता का शीर्षक है सुचरित्र ही शेष इंसान की पहचान है, आदर्श चरित्र से जो गिरा एक दिन मुसीबत से गिरा। आदर्श चरित्र से जो गिरा एक दिन मुसीबत से घिरा, राष्ट्र घर समाज की नजरों में वो जिंदा मरा। सबको पता आज क्या दशा गुरमीत आशा राम की, आज मिल रही उनकी सजा काम जैसा है करा। चमकाता सुचरित्र ही इंसान को संसार में, दुष्चरित्र इंसान तो ता उम्र जेलों में सड़ा। प्रमाण रावण सामने हर वर्ग हर वर्ष फूकता आग में, जब मरा संतान भाई साथ लेकर के मरा। प्रयोग ने जिसने किया निज ज्ञान को सत्कर्म में, आदर्श चरित्र से जो गिरा एक दिन मुसीबत से घिरा। वो जिंदगी में भी जला और बाद मृत्यु भी जला, आदर्श वानों ने किया राष्ट्र नाम ऊंचा विश्व में। जहां जहां गए संसार में दिया देश का डंका बजा, आदर्श चरित्र से जो गिरा
एक दिन मुसीबत

0: से घिरा, आदर्श से जो गिरा एक दिन मुसीबत से गिरा। बुरे लोगों पर कभी अल्लाह ईश्वर की कृपा नहीं होती। देते जो दुख इंसान को, लगता बुरा भगवान को, मानता ने जो फरमान को, देते मिटा उस नाम को। रावण और कौरवों का हसर, यहाँ जानते हैं सब बसर। विध्वंस हेतु भेजा था महाशक्ति ने कृष्ण राम को। जो चले जीवन में अपने न्याय सत्य मार्ग को, जीवन में न त्यागा कभी परमार्थ और कल्याण को। जुल्म जिसने किया वंश तक विध्वंस किया, चाहते जीवन उद्धार कर अंदर जगाओ ज्ञान को, अंदर जगाओ ज्ञान को। देते जो दुख इंसान को, लगता बुरा भगवान को। जिसने समझा सब धर्मों को शुरू से एक समान, ऐसा मुल्क एक ही दिखा केवल हिंदुस्तान। ऐसा मुल्क एक ही दिखा केवल हिंदुस्तान। एक दूजे के बनकर रहते पूरक सब इंसान, देखे हैं सब वक्त पर आते एक दूजे के काम। जिसने समझा सब धर्मों को शुरू से एक समान, आजादी के लिए लड़े हैं हर एक धर्म इंसान। चाहते थे सब देश आजादी हिंदू मुसलमान, धर्म भेद न अब भी कोई जो है श्रेष्ठ इंसान। गाते हैं सब देश का मिलकर वंदे मातरम गान, ऐसों को धर्म मजहब से ऊपर लगता देश महान। करते हैं गुणगान देश का सब अच्छे इंसान, जिसने समझा सब धर्मों को शुरू से एक समान। ऐसा मुल्क एक ही दिखा केवल हिंदुस्तान। सौहार्द की रचना है, धर्म मजहब कोई अलग न समझे, धर्म मजहब कोई अलग न समझे, ऐसा हर का ज्ञान बने। धर्म मजहब कोई अलग न समझे, ऐसा हर का ज्ञान बने। एक दूजे को देख के खुश हो, ऐसा हिंदुस्तान बने। अपने राष्ट्र के विरुद्ध सोचे हर में ये सद ज्ञान जगे, देश के प्रति मर मिटने का हर दिल में ईमान बने। झूठ स्वार्थ छल धगा त्याग दे, दुश्मन के न मीत बने। जिनको देखे देश विरुद्धियां उन पर न मेहरबान बने। ज्ञान अगर है फर्ज को समझे, राष्ट्र को धर्म से ऊंचा समझे। नैतिकता इंसानियत ही अब हर एक किसी का धर्म बने। एक दूजे को देख के खुश हो, ऐसा हिंदुस्तान बने। जाना हमें सहयोग और संस्कार से ऊपर उठाना सीख लो, किस्मत बदल जाएगी हर सर्वहित पर चलना सीख लो। शीर्षक है मीठे बोल से दुश्मन भी अपना बनता है। सच बोलो मुख से मधुर वचन, खुश होगा देख कर पूर्ण वतन। होगा कैसे यहाँ देश भला जब बोल रहा हर कटु वचन।
1: काव्यधारा के अंतर्गत आपने सुना जगदीश चंद्र वर्मा से ये काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में उसके बाद हिंदी में।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम् अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथिरूपेण उपस्थितः भविष्यति। 15-2000 वर्षात् अनन्तरम् इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मंत्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं, भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमंत्री अमित शाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटक यान सेवायाः शुभारंभं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी सम्बद्धाः चतुस्सहस्राधिकाः सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद, सूरत, वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य चतुर्दशसु जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामि मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवाविस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाहः गतवासरे मादकद्रव्याणि विरुध्य संयुक्तसंघर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै, सामाजिकस्थिरतायै, आर्थिकहिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतॄन्, यूनः, मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयक संयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
3: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
2: उत्तर प्रदेशारक्षिबलेना श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य दानराशि वञ्चना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां, दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वीयोत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रोत्तराखंडेषु, लक्षद्वीपस्य कतिपय क्षेत्रेषु च तडित्पातस्य संभावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: केंद्रीय सहकारिता

0: श्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह की गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सवेरे के 7:05 और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज जानकारी का विषय है वजन कम करने के उपाय।
2: वजन घटाने के लिए सही वक्त पर सही खाना बेहद जरूरी है। अगर वजन घटाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि कोई भी खाना छोड़े नहीं। 3 प्रॉपर मील और बीच में 2 स्नैक्स जरूर लें। कोई भी खाना छोड़ोगे तो अगली बार ज्यादा खाओगे, जो सही नहीं है। दिन की शुरुआत कॉफी या चाय से न करें। नींबू पानी जूस लिया जा सकता है। दिन भर के खाने में सबसे ज्यादा फोकस ब्रेकफास्ट पर होना चाहिए। अक्सर लोग वजन कम करने के धुन में ब्रेकफास्ट नहीं लेते, लेकिन शोध ये कहते हैं कि अगर नियमित रूप से ब्रेकफास्ट लिया जाए तो लंबी अवधि में वजन कम होता है। दिन का खाना पूरा होना चाहिए, जबकि डिनर सबसे हल्का। डिनर रात में 8 बजे तक कर लेना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है तो भी सोने से 2 घंटे पहले खाना जरूर खा लें। अगर देर रात तक जागते हैं और भूख लगती है तो फ्रूट्स या सलाद खाने चाहिए। शुगर, जंक फूड, फास्ट फूड, मिठाइयां खाने की लिस्ट से निकाल दें। कैंडी, जेली, शहद, मिठाई और सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहें। इसी तरह बिस्किट, केक, पेस्ट्री में काफी फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो मोटापा बढ़ाता है। चीनी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। 5 ग्राम यानी 1 चम्मच चीनी में 20 कैलोरी होती है। परंपरागत मसाले न सिर्फ स्वाद

0: आते हैं, बल्कि उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर भी होते हैं। बस इन्हें भूनने के लिए ज्यादा तेल का इस्तेमाल न किया जाए। बिना छना आटा खाएं। गेहूं के साथ चने का आटा मिलाने से पाचन अच्छा होता है। गेहूं या जौ का आटा बिना छना, ब्राउन ब्रेड, दलिया, कॉर्न या व्हीट फ्लेक्स, ब्राउन राइस व छिलके वाली दालें आदि खाएं। अंकुरित अनाज व दालें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन से भरपूर होती हैं। मौसमी फल खाएं, जूस के बजाय साबुत फल बेहतर है। सेब के साथ साथ ज्यादातर सभी फलों के छिलकों में पेक्टिन पाया जाता है, ये वसा को अवशोषित करता है। हफ्ते में कम से कम 3 बार सोयाबीन खाने से शरीर में फैट से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। सोयाबीन को अंकुरित करके रोज सुबह लिया जा सकता है। इसके अलावा लहसुन का रस शरीर में मौजूद फैट्स को कम करने में मददगार है। लहसुन कच्चा खाएं और चबाकर खाएं तो बेहतर है। साथ ही मुट्ठी भर नट्स रोज खाने चाहिए। इनमें बादाम, किशमिश, अखरोट और पिस्ता ले सकते हैं, लेकिन ये फ्राइड ना हो और इनमें नमक भी नहीं होना चाहिए। वजन कम करना चाहते हैं तो ज्यादातर सफेद चीजें, आलू, मैदा, चीनी, चावल आदि कम करें और मल्टीग्रेन या मल्टी कलर खाने, जैसे दालें, गेहूं, चना, जौ, गाजर, पालक, सेब, पपीता आदि पर जोर दें। बिना फैट वाला दूध या दही खाएं। दूध में फैट कम करने के लिए उसमें पानी मिलाने से बेहतर है कि मलाई उतार लें। पानी मिलाने से दूध में पोषक तत्व कम होते हैं। सोया से बना पनीर, दूध और दही खा सकते हैं। जिन्हें दूध या सोया प्रोडक्ट से एलर्जी है, वे राजमा, नींबू, टमाटर, मेथी, पालक, बादाम, काजू जैसी चीजें खाकर कैल्शियम की कमी पूरा कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 लीटर पानी व तरल पदार्थ लें। पानी न सिर्फ फैट कम करता है बल्कि शरीर से जहरीले तत्वों को भी निकालता है। ये भूख कम करता है और कब्ज रोकता है। खाने में 15 मिनट बाद घूट घूट कर गर्म पानी पीना चाहिए। 50 साल के आसपास का समय महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इस उम्र में अक्सर मोटापा आने लगता है। दरअसल महिलाओं में इस उम्र में मासिक धर्म बंद होने वाला होता है और उनकी हार्मोन्स प्रक्रिया में बदलाव आने लगता है। इस उम्र में थकावट आदि रहने से महिलाएं आराम परस्त हो जाती हैं और उनके शरीर का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ पुरुषों को इस उम्र में दमा, खांसी, गठिया, जोड़ों का दर्द आदि हो जाते हैं, जिससे उनकी जिंदगी घर के दायरे में सिमट कर रह जाती है। ये स्थिति उनके मोटापे का कारण बन जाती है। ऐसे लोगों को, महिलाएं हो या पुरुष, घर के अंदर ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम करते रहना चाहिए, जिससे वजन पर नियंत्रण रखा जा सके।
1: स्वास्थ्य चर्चा में आप सुन रहे थे वजन कम करने के उपाय विषय पर यह जानकारी। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। समय सवेरे के 7:10 और कार्यक्रम खेती की बातें में आज जानकारी का विषय है कृषि विभाग कैसे करे किसानों की सहायता।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है कृषि विभाग कैसे करे किसानों की सहायता। किसान भाइयों, अगर हम कृषि की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। किसानों की उन्नति के बिना ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में कृषि विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कृषि विभाग किसानों को नई तकनीकों, उन्नत बीजों, आधुनिक कृषि यंत्रों, सिंचाई सुविधाओं, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनकी आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन में सुधार करने का कार्य करता है। कृषि विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाना है। किसान भाइयों, कृषि विभाग किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नई कृषि तकनीकों की जानकारी देता है। इन प्रशिक्षणों में उन्नत कृषि पद्धतियां, फसल प्रबंधन, रोग एवं कीट नियंत्रण, उर्वरक प्रबंधन तथा जल संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। जब किसान नई तकनीकों को अपनाते हैं तो उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है और लागत में कमी आती है। कृषि वैज्ञानिकों और कृषि प्रसार अधिकारियों द्वारा खेत स्तर पर किसानों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपनी समस्याओं का

0: धन आसानी से कर पाते हैं। किसान भाइयों, उन्नत बीज कृषि उत्पादन बढ़ाने का मुख्य आधार है। कृषि विभाग किसानों को प्रमाणित एवं गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने में सहायता करता है। विभाग विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बीजों का अनुदान भी प्रदान करता है ताकि किसान कम लागत में बेहतर बीज प्राप्त कर सके। उन्नत बीजों के उपयोग से फसल की उपज बढ़ती है। मृदा स्वास्थ्य की जानकारी किसानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कृषि विभाग द्वारा मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मिट्टी की जांच के माध्यम से यह पता लग जाता है कि खेत में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। इसके आधार पर किसानों को उचित उर्वरकों और उनकी मात्रा के बारे में सलाह दी जाती है। इससे उर्वरकों का संतुलित उपयोग संभव होता है, उत्पादन बढ़ता है तथा मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है। किसान भाइयों, सिंचाई सुविधाओं के विकास में भी कृषि विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन प्रणालियों पर सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। जल संरक्षण तकनीकों के प्रचार प्रसार से किसानों को कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसी के साथ फसलों में कीट एवं रोगों का प्रकोप किसानों के लिए बड़ी चुनौती होता है। कृषि विभाग किसानों को समय समय पर रोगों और कीटों की पहचान तथा उनके नियंत्रण के उपायों की जानकारी प्रदान करता है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणाली अपनाने की सलाह देते हैं जिससे रासायनिक दवाओं का उपयोग कम होता है और पर्यावरण संरक्षण भी होता है। साथ ही कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराता है जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, रीपर, हार्वेस्टर तथा अन्य आधुनिक कृषि उपकरण किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे खेती के कार्यों में समय और श्रम की बचत होती है तथा उत्पादन लागत कम होती है। कृषि विभाग किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा अन्य योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाती है। विभाग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि पात्र किसानों को इन योजनाओं का लाभ समय पर मिले और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसके साथ ही कृषि विभाग किसानों को बाजार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में भी सहायता करता है। महिला किसानों के सशक्तिकरण में कृषि विभाग विशेष प्रयास करता है। महिलाओं को कृषि संबंधी प्रशिक्षण, स्वरोजगार कार्यक्रम, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन गतिविधियों से जोड़ा जाता है। इससे महिलाओं की आय बढ़ती है। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की खेती की बातें।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कृषि विभाग कैसे करे किसानों की सहायता, इस विषय पर जानकारी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। समय सुबह के 7:15 और अब हाई श्रोताओं, आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित आज के प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। जिले की हलचल आज सुबह 9:15 पर आकाशवाणी लखनऊ से, आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की म्यूनिसिपल कारपोरेशन में गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बातचीत। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा आज रात्रि 9:30 पर। साथ ही संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा आकाशवाणी दिल्ली से ही आज रात्रि 10:00। मोहन कुमार गुप्ता के गाय भजनों का आनंद लीजिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम में आज शाम 7:32 पर। डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा की पूर्व प्रसारित वार्ता वर्तमान में काव्य मंचों की दशा व दिशा विविधा के अंतर्गत सुनिएगा आज शाम 6:55 पर। और आज शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे लोकगीतों व रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन प्रोग्राम हेलो लोकमंजरी। साथ ही सुनेंगे चर्चा जिसका विषय रहेगा बीज शोधन का महत्व और DPT। युवाणी का समय रहेगा आज शाम 5:30 जिसमें क्रम रहेगा कुछ खास है आज गीता।

0: के नाम बूस्टर्स रहस्य सीरीज सीजन 2 भूल भुलैया का एपिसोड 3 आलेख एवं प्रस्तुति सहयोग आदिल सैफी का। आज शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत में सुनिएगा जानकारी प्रधानमंत्री विकास योजना और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या DBT के विषय में। लता कुंजवाल के गाय कुमाऊनी लोकगीत आप सुनेंगे आज दोपहर 1:45 पर लोक संगीत कार्यक्रम लोकधारा में, और आज दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें क्रम रहेगा आधी आबादी से। साथ ही सुनिएगा लघु नाटिका ससुराल बेटी का, कल और समाज। प्रतिभागी कलाकार होंगे प्रियंका त्यागी, सुनीता नेगी, दीपांशु, अलीना मेहताब, निर्देशक अंकित सैनी और प्रस्तुतकर्ता शोभित शर्मा। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कम्पेयर्ड प्रोग्राम जिंदगी लाइव हमारे श्रोता सुनेंगे आज दिन में 12:05 पर। अर्पणा श्रीवास्तव के गाय रोहेलखंडी लोकगीत होंगे आज सुबह 9:25 पर लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत। और अब से कुछ ही देर यानी प्रातः 7:31 पर समय रहेगा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित आज के प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय प्रातः के 7:18 होने को है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं स्केती अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत, कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। और अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनावों में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी

0: पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान और चढ़ावा मामले में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। श्रीराम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपियों को जेल भेजे जाने के बाद अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर बाकी आरोपियों से कुल मिलाकर 79,85,000 रुपए से अधिक की रकम बरामद की गई है। आरोपियों को 29 जून को एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में एफआईआर दर्ज होने और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक निजी एस्ट्रोमेडिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने राज्य में 2017 से पहले स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब स्थिति के लिए तत्कालीन सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने वर्तमान सरकार में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के उन्नयन का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवा रही है। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 से 2029 की अवधि के लिए कल मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। इस अवसर पर गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा।

0: और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश ने सोलर रूफटॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्द्र सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और यह देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा के मौके पर कल प्रदेश भर में ताजिया जुलूस निकाले गए। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। जुलूसों के बाद देर रात तक कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। लखनऊ स्थित तालकटोरा की कर्बला में बड़ी संख्या में लोगों ने इमाम हुसैन को याद किया। 10वीं मुहर्रम पर गोरखपुर में भी कल सुबह से ही ताजिया जुलूसों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात भर चलता रहा। एक रिपोर्ट।
2: मुहर्रम की 10वीं तारीख पर महानगर के सभी इमाम चौकों पर बैठाए गए ताजिए के साथ अकीदत मंदों ने जुलूस निकाला और कर्बला पहुंचकर ताजियों को कर्बला में दफन किया। इमाम चौकों पर रखे गए बड़े ताजिए जुलूस में शामिल हुए। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: मथुरा, सुल्तानपुर, फरुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, जौनपुर, उन्नाव, हापुड़ और महाराजगंज सहित राज्य के सभी जिलों में ताजिया जुलूस निकाले गए। इस अवसर पर प्रदेश भर में ताजिया जुलूस मार्गों और कर्बलाओं के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून प्रवेश करेगा। इसके बाद 30 जून से 3-4 दिनों तक प्रदेश भर में गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। श्रीराम मंदिर के दान और चढ़ावा मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट। नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का किया आह्वान। और प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत, कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवेश करेगा मानसून। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सुबह के 7:31 और लीजिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

मेहनत की राहों में उम्मीदों के दीप जलाइए, छोटे छोटे सपनों को हौसलों से सजाइए। बूंद बूंद से बनता है सागर, कदम कदम से कारवां। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और हर मुश्किल को भी अपनाइए, क्योंकि जो खुद आगे बढ़ता है वही औरों का सहारा बन जाता है। इसलिए बेखबर हो चुनौतियों से, खुद को आत्मनिर्भर बनाइए। सुप्रभात, अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत सभी श्रोताओं का आज के सूरज के साथ साथ कार्यक्रम में। और आज कार्यक्रम लेकर आपके साथ है आपके रेडियो साथी श्वेता भट्ट। श्रोताओं, कोई भी बड़ा उद्योग या व्यवसाय कभी न कभी एक छोटे से सपने के रूप में शुरू हुआ होता है। यही छोटे छोटे सपने जब मेहनत, लगन और नवाचार का साथ पाते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था की नींव बन जाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हर बड़ी कंपनी की शुरुआत कभी ना कभी एक छोटे से कमरे, छोटी सी दुकान या छोटे से कारखाने या फिर किसी छोटे से सपने से शुरू होती है। कोई सिलाई मशीन से शुरू हुआ, किसी ने घर की रसोई से अपना काम शुरू किया, तो किसी ने दो चार लोगों के साथ मिलकर एक छोटा सा उद्योग खड़ा किया। और श्रोताओं, यही छोटे छोटे प्रयास जब मेहनत और लगन से आगे बढ़ते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। इन्हीं सपनों, संघर्षों और सफलताओं को सम्मान देने के लिए हर वर्ष 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस यानी इंटरनेशनल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे मनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति छोटा उद्योग चलाता है, जैसे सिलाई का काम, हस्तशिल्प, फर्नीचर बनाना, डेयरी चलाना, मसाले तैयार करना या खिलौने बनाना, अगरबत्ती बनाना, बेकरी, मोबाइल रिपेयरिंग, मोटर गैरेज या फूड स्टॉल आदि, तो ऐसे बहुत से छोटे और मध्यम व्यवसाय एमएसएमई की श्रेणी में आते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दुनिया के लगभग हर देश और राज्य में लाखों करोड़ों को रोजगार देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल 2017 को निर्णय लिया कि हर वर्ष 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य छोटे उद्योगों का सम्मान करना, उन्हें आगे बढ़ाना और लोगों को ये समझाना कि देश की तरक्की केवल बड़े उद्योगों से नहीं बल्कि छोटे उद्यमियों की मेहनत से भी होती है। श्रोताओं, जरा सोचिए, अगर आपके शहर की छोटी दुकानें बंद हो जाएं, गांव के कारीगर जो हैं वो काम करना छोड़ दें, दर्जी, बुनकर, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, डेयरी वाले, मिठाई बनाने वाले, समोसे, पकौड़ी और मोमोज बनाने वाले या छोटे कारखाने सब काम बंद कर दें तो क्या होगा? है ना बहुत अजीब ख्याल? इसीलिए श्रोताओं, रोजगार कम हो जाएगा, स्थानीय सामान मिलना मुश्किल हो जाएगा और लोगों की आमदनी पर भी असर पड़ेगा। यही कारण है कि एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। और श्रोताओं, अब ये सवाल उठता है कि इससे आम लोगों को क्या फायदा है? तो श्रोताओं, आपको बताएं, इससे बहुत फायदे हैं। लोगों को अपने ही शहर और अपने ही गांव में रोजगार मिलता है, इनकम आने लगती है और युवाओं को नौकरी के साथ साथ अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर भी मिलता है। महिलाओं को घर बैठे काम करने के अवसर मिलते हैं, स्थानीय सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है, गांवों, कस्बों का विकास होता है, लोगों की आय बढ़ती है और आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ साथ देश की और जिले की और किसी भी जगह की गरीबी भी कम करने में मदद मिलती है। और श्रोताओं, आज का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बन सकता है। अगर आपके पास हुनर है तो छोटा काम शुरू करने में कोई हिचक, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रोताओं, हर विशाल वृक्ष एक छोटा सा बीज था, है ना? और श्रोताओं, भारत सरकार भी एमएसएमई के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाती है, जैसे आसान ऋण का सुविधा, कौशल विकास प्रशिक्षण, डिजिटल व्यापार को बढ़ावा, महिलाओं और नए उद्यमियों को प्रोत्साहन और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की पहल। और श्रोताओं, हम सब भी मिलकर अपना योगदान इसमें दे सकते हैं। जब भी संभव हो अपने आसपास के छोटे दुकानदारों से खरीदारी करें, स्थानीय उत्पादों को अपनाएं, हुनरमंद लोगों का सम्मान करें
और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें, क्योंकि श्रोताओं यही सच्ची आत्मनिर्भरता है। और वैसे भी श्रोताओं, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी बस इंसान की सोच होती है। और जो व्यक्ति मेहनत से आगे बढ़ता है वो केवल अपना नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल देता है। छोटे कदम ही बड़ी मंजिलों का रास्ता बनाते हैं। हर सफल उद्योग की शुरुआत एक छोटे से विश्वास के साथ होती है। इसलिए श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर संकल्प लें कि हम अपने देश के छोटे उद्योगों का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय उत्पादों को अपनाएंगे और हर उस हाथ को मजबूत बनाएंगे जो मेहनत से अपने सपनों को आकार दे रहा है।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
5: तो इंतजार किस बात का,
4: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
5: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
5: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
4: और हमारा ईमेल आईडी है
5: akashwaninajibabad@gmail.com।
4: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
6: एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र और कार्यक्रम है सूरज के साथ साथ। नजर नहीं तो क्या हुआ, नजरिया तो कमाल है, खामोशी में भी छुपा हुआ सपनों का सुरताल है, हौसलों की उड़ान से हर सीमा टूट जाती है, जज्बा हो इंसान के अंदर तो सोई तकदीर भी जाग जाती है। जी हाँ श्रोताओं, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी रोशनी आंखों से नहीं बल्कि हौसलों से दिखाई देती है, और सबसे मधुर आवाज कानों से नहीं बल्कि संवेदनाओं से सुनी जाती है। लेकिन श्रोताओं, कई बार हम सोचते हैं कि अगर देखने की शक्ति ना हो या सुनने की क्षमता ना हो तो जीवन कितना कठिन हो जाएगा। पर इतिहास में एक ऐसी महान महिला हुई जिन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि कमजोरी शरीर में हो सकती है, लेकिन अगर मन और इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी डिसेबिलिटी इंसान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और श्रोताओं, उस महिला का नाम था हेलन केलर। 27 जून 1980 को अल्बामा अमेरिका में जन्मी हेलन, जिन्होंने केवल 19 महीने की उम्र में एक गंभीर बीमारी के कारण देखने और सुनने की शक्ति खो दी थी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, अपने साहस, मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से पूरी दुनिया के लिए वे प्रेरणा बन गईं। वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पढ़ाई की, कॉलेज की डिग्री प्राप्त की, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और सैकड़ों लेख लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध द स्टोरी ऑफ माई लाइफ उनकी आत्मकथा सबसे प्रसिद्ध है। उन्होंने दुनिया के अनेक देशों की यात्रा कर दिव्यांग जनों के अधिकार, शिक्षा, समान अवसर के लिए आवाज उठाई। अमेरिका की पहली बधिर दृष्टिहीन स्नातक बनी और विश्व की सबसे प्रसिद्ध दृष्टि बाधित एवं बधिर दृष्टिहीन समाज सेवी, लेखिका और वक्ता भी। श्रोताओं, उनके इसी संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय बधिर दृष्टिहीनता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी, और ये दिन महान समाजसेवी, लेखिका और दिव्यांग अधिकारों की प्रबल समर्थक हेलन केलर की जयंती के उपलक्ष्य में भी सेलिब्रेट होता है। श्रोताओं, बधिर दृष्टिहीनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सुनने और देखने दोनों में गंभीर कठिनाई होती है। ऐसे लोगों के सामने संचार, शिक्षा, आवागमन और सामाजिक सहभागिता जैसी अनेक चुनौतियां होती हैं, इसलिए इन्हें विशेष सहयोग, सुगम वातावरण और संवेदनशील समाज की आवश्यकता होती है। अगर श्रोताओं, जब समाज सभी को एक साथ लेकर चलता है तभी असली विकास होता है। अगर किसी व्यक्ति को देखने या सुनने में दिक्कत है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कम आंका जाए, उसे केवल थोड़ा सा सहयोग, थोड़ी सी संवेदनशीलता और थोड़ा सा

आसान बन जाता है। और श्रोताओं, वैसे भी कहते हैं ना कि दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ें ना आँखों से देखी जा सकती हैं, ना छुई जा सकती हैं, उन्हें केवल सुंदर मन और सुंदर अंतरात्मा से बस महसूस किया जा सकता है। हौसलों की लौ जलाकर हर अंधेरा मिटाइए, प्यार और अपनापन हर दिल तक पहुंचाइए, जो पीछे रह गए हैं उनका हाथ ही हाथ थामिए, मानवता की राह पर साथ मिलकर कदम बढ़ाइए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र और कार्यक्रम है सूरज के साथ साथ। और श्रोताओं, कार्यक्रम के बढ़ते हुए क्रम में आइए अब जानते हैं देश और दुनिया के इतिहास में क्या कुछ खास हुआ आज तिथि विशेष में। श्रोताओं, 27 जून 1967 को दुनिया की पहली एटीएम मशीन इंग्लैंड यानी लंदन के इनफील्ड में लगाई गई। इसका आविष्कार स्कॉटिश इंजीनियर जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था। उस समय बैंक केवल सीमित समय तक खुलते थे, इसलिए ग्राहकों को बैंक बंद होने के बाद भी नकद राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑटोमेटेड टेलर मशीन की शुरुआत हुई। 1967 में ही आज ही के दिन यानी 27 जून को भारत में निर्मित पहले यात्री विमान HS-748 इंडियन एयरलाइंस को सौंपा गया। इस विमान को एवरो नाम से भी जाना जाता है। 27 जून 1954 को दुनिया का सबसे पहला ग्रिड से जुड़ा व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ऑब्निक्स परमाणु ऊर्जा शुरू किया गया। इसने पहली बार परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाकर राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की आपूर्ति की। यह आधुनिक परमाणु ऊर्जा की शुरुआत माना जाता है। साल 2005 आज ही के दिन यानी 27 जून को भारत, पाकिस्तान और ईरान ने IPI गैस पाइपलाइन परियोजना में आ रही तकनीकी और आर्थिक बाधाओं को दूर करने की दिशा में प्रगति की। इस परियोजना का उद्देश्य ईरान की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुँचाना था, जिससे ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो सकें। बाद में सुरक्षा, कीमत और रणनीतिक कारणों से भारत इस परियोजना से अलग हो गया और ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। श्रोताओं, भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मोनेकशॉ का निधन 27 जून साल 2008 को हुआ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऐतिहासिक विजय की प्राप्ति की, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। वे अपनी दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और सैनिकों के प्रति समर्पण के लिए आज भी सम्मान पूर्वक याद किए जाते हैं। वहीं सिख साम्राज्य के संस्थापक और शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु आज यानी 27 जून 1839 को लाहौर में हुई। उन्होंने पंजाब को एक शक्तिशाली और संगठित राज्य बनाया। उनके शासन में धार्मिक सुशासन और मजबूत सेना के कारण पंजाब समृद्ध हुआ। उन्होंने विदेशी आक्रमणों से उत्तर पश्चिम भारत की प्रभावी रक्षा की। श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के दिन जन्मे महान व्यक्तित्व की। श्रोताओं, 27 जून 1964 को जन्मी भारत की महान धाविका जिन्हें प्योली एक्सप्रेस और भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी कहा जाता है, यानी PT उषा। उन्होंने अनेक एशियाई स्वर्ण पदक जीते। 1984 ओलंपिक में वे 400 मीटर बाधा दौड़ में मात्र 0.01 सेकंड से पदक से चूक गईं। बाद में उन्होंने उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स की स्थापना की, नई प्रतिभाओं को तैयार किया। और विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना, क्योरोग्राफर और उदय शंकर की सहयोगी एवं पत्नी आमला शंकर का जन्म भी श्रोताओं 27 जून 1919 को हुआ था। भारतीय शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य और आधुनिक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में आपका बड़ा योगदान रहा। श्रोताओं, 27 जून 1950 को जन्म हुआ प्रसिद्ध पार्श्व गायक और महान गायक मुकेश के पुत्र नितिन मुकेश का। उन्होंने हिंदी फिल्मों और भक्ति संगीत में अनेक लोकप्रिय गीत गाए तथा भारतीय संगीत जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और श्रोताओं, 27 जून 1939 को जन्म हुआ हिंदी सिनेमा के सब

से प्रभावशाली संगीतकारों में गिने जाने वाले जिन्होंने भारतीय और पाश्चात्य संगीत का अनूठा संगम प्रस्तुत किया तथा सैकड़ों कालजयी धुन दी। जी हाँ श्रोताओं, पंचमदा यानी राहुल देव बर्मन। श्रोताओं, आर डी बर्मन ने 400 से भी ज्यादा फिल्मों में यादगार संगीत दिया। आर डी बर्मन को 3 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और भारतीय संगीत इतिहास के सबसे प्रभावशाली संगीतकारों में गिने जाते थे आर डी बर्मन।

और श्रोताओं, अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अमर उजाला लिखता है, राजस्थान डिपो में अनुबंधित डबल टेकर बस में लगी आग, बाल बाल बचे 26 यात्री। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर दादरी गांव के पास बड़ा हादसा, हाईवे पर चलती बस में धुआं उठते ही चालक ने सूझबूझ से रोकी बस। मध्य गंगा परियोजना फेज टू का कार्य लगभग पूरा, लहलहाएंगी फसलें। जल शक्ति एवं संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव ने कालागढ़ के रामगंगा भवन में मेरठ के मध्य गंगा व मुरादाबाद के पूर्वी गंगा संगठनों के कार्यों की समीक्षा की। 68 करोड़ से होगा 2 राजमार्गों का चौड़ीकरण। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग लखनऊ को प्रस्ताव भेजा गया, स्वीकृति मिलने के बाद शुरू होगा निर्माण, चांदपुर के लोगों को मिलेगी सुविधा। होमर्स खुलने के बाद भी जारी रहेगा तेल संकट, 4 महीनों में 1.15 अरब बैरल हुआ नुकसान। IEA अमेरिकी ऊर्जा प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार तेल भंडारों को पुराने स्तर पर लौटने पर लगेगा लंबा समय। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद 46,000 लोग अब भी लापता, मलबे में जिंदगी खोजने की जंग, जीवनदान में उतरेगी भारतीय सेना। ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू, संकट की घड़ी में भारत देगा साथ। वहीं अर्धकुंभ से पहले दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़कर जाम मुक्त होगा हरिद्वार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की हरिद्वार शहर में निर्माणाधीन 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं पूरी होने जा रही हैं। हरिद्वार को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा ये मार्ग। ये मार्ग है 51 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाईवे। और श्रोताओं, साथ ही प्रति व्यक्ति के आधार पर मिलेगा अनाज, अंत्योदय अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण, 7 किलो प्रति व्यक्ति, एक परिवार को अधिकतम 35 किलो अनाज देने का प्रस्ताव। और श्रोताओं, अब चलते चलते ये गीत आप सभी के लिए।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 8 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
2: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
5: अमूल, इफ्को और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार

0: जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है, लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला के हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए 183 रन के लक्ष्य के

0: जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और केबो वर्दे तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र सिक्किम असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार छत्तीसगढ़ कोंकण गोवा तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरलम माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बहामी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासिरा

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। समय सुबह के 8:45 हो रहे हैं। लीजिए पेश है सदाबहार नगमों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। स्वागत है सभी श्रोताओं का आज के गोल्डन हिट्स कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का ये पहला गीत मुकेश और साथियों की आवाज़ में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से।

0: रंगी।
1: गोल्डन हिट्स कार्यक्रम का ये पहला गीत श्रोताओं आपने सुना मुकेश और साथियों की आवाज में, फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सावन से, आवाज है लता मंगेशकर की, शब्द रचना है प्रेम धवन की और संगीत दिया है हंसराज बहल ने।

0: श्रोताओं, आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आपने सुनी प्रेम धवन का लिखा ये गीत, जिससे गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, फिल्म थी अभिलाषा।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सावन की घटा से, जिसमें आवाजें हैं आशा भोसले की और गीत लिखा है HS बिहारी ने, संगीत है OP नैयर का।

श्रोताओं, गोल्डन हिट्स कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और कार्यक्रम का अगला गीत है महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म हमराज से। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत है रवि का।

उषा मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में आपने सुना फिल्म निशान का ये गीत। शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और संगीत था उषा खन्ना का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कुदरत से। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

0: श्रोताओं, किशोर कुमार की गाय कुदरत फिल्म के इसी गीत के साथ ही आज का गोल्डन हिट्स कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत गोल्डन हिट्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 9:15 होने को हैं, कुछ ही पलों में सुनिएगा जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सुल्तानपुर और बुलंदशहर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है दर्शन कुमार साहू का।
2: सुल्तानपुर जिले में पिछले एक माह से सूर्य की तपिश का सामना कर रहे जिलेवासी मानसून के आने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माह भर से जिले में पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहा। सप्ताह भर से पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी के चलते राहगीरों के लिए जिला प्रशासन ने राजीव गांधी पार्क परिसर में अस्थायी कूल होम भी बनाया है, जहाँ पर पानी पीने, बैठने व आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। भीषण गर्मी के चलते जिले की सामाजिक संस्थाओं ने राहगीरों के लिए अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर, मिट्टी के घड़ों में निर्मल जल एवं गुड़ रखकर निःशुल्क प्याऊ सेंटर भी खोल रखे हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ माह के मंगलवार को जिले भर में बृहद स्तर पर भंडारों का आयोजन किया जाता रहा। इस सप्ताह अंतिम मंगलवार को नगर में विशेष कर चौक क्षेत्र में आयोजित भंडारों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन श्रद्धालुओं को वितरित किए गए। सुल्तानपुर जिले में जनगणना 2027 का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है। 7,10,223 मकानों की गणना हुई है। इसके अनुसार 947 परिवार अंकित किए गए हैं। मकान सूचीकरण के आधार पर अनुमानित जनसंख्या 31,07,493 हो गई है। पहले चरण में 5,600 कार्मिकों ने डाटा एकत्र करने का काम किया। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। यह 2027 में फरवरी में शुरू होगा। इसमें जातिगत जनगणना भी की जाएगी। जनगणना कार्यक्रम के संबंध में जिला जनगणना अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि
3: जनगणना 2027 का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में जनपद सुल्तानपुर में जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान हमारे जनपद सुल्तानपुर में 5 तहसीलों और 5 स्थानीय निकायों को मिलाकर कुल 10 चार्ज गठित किए गए थे और इन 10 चार्जों में टोटल हमारी 4390 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक गठित किए गए। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारी पूरी टीम ने बड़ी तल्लीनता से कार्य किया और इसे समय रहते हुए पूरा किया।
2: जनपद सुल्तानपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम बृहद स्तर पर आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम पर्यावरण पार्क में आयोजित किया गया, जहां पर उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया था। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऋषि परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मान्यता दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र के एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जो निरंतर 12 वर्षों से निरंतर अपने राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए महाअभियान चलाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे नेतृत्वकर्ता का सानिध्य पाना हम सबके लिए सौभाग्य है। उन्होंने पीएम के आह्वान को दोहराते हुए प्रत्येक दिन नियमित योग को अपनाने का नागरिकों को संकल्प दिलाया। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों ने योग को अपनाकर अपने जीवन को सहाल बना लिया है। योग प्रशिक्षिका मोनालिसा ने बताया कि
4: जो मेडिसिन भी जो काम नहीं कर पाती, अगर हम नियमित रूप से योगा करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें जड़ से खत्म हो गई है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आजकल इतना बिजी रूटीन हो गया है, मोबाइल फोन, इधर टाइम नहीं मिलता है लोगों को कुछ भी करने का। अगर हाफ एन आवर या 1 आवर डेली निकाल लें अपने शरीर के लिए तो शरीर जो है नियमित रूप से बहुत ही अच्छा रहेगा।
2: जनपद में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी गति मिली है। अयोध्या प्रयागराज हाईवे को टांडा बांधा हाईवे से जोड़ने वाली पकड़ी बनकेपुर मार्ग का चौड़ीकरण लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा। वहीं गोमती नदी के निरसहिया घाट पर लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पुल बनने से तराई क्षेत्र के 5 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले की 35 ग्राम पंचायतों में नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शासन ने 15वें वित्त आयोग के तहत 14 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। प्रथम चरण में चयनित ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इधर 28 जून से जिले में पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने 0 से 5 वर्ष तक के 3,56,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बूथों के साथ साथ घर घर जाकर भी बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाने की अपील की है।
1: सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बुलंदशहर जिले की हलचल। आलेख है श्रीपाल सिंह का।
5: गंगा दशहरा पर्व पर बुलंदशहर जिले में लाखों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। जिले के अनुपशहर आहार नरोरा कर्णवास राजघाट रामघाट सहित सभी गंगा घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात रही। स्नान को लेकर सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर घाटों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। लखनऊ में एक निजी कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक घटना के बाद बुलंदशहर में भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। जिले के अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पुलिस प्रशासन के अफसरों के द्वारा अग्निशमन की टीम के साथ निरीक्षण किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर्स में आपात स्थिति में बचाव के लिए क्या इंतजाम है उन्हें भी गंभीरता से परखा जा रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले भर में अलग अलग टीम बनाकर तमाम व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। साथ ही इमरजेंसी में कैसे खुद को सुरक्षित करें ये भी बताया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराने के उद्देश्य से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए 1 जुलाई से जिले भर में स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत घर घर संपर्क कर बच्चों का नामांकन कराया जाएगा। इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में कुल 1862 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें अब तक करीब 2,00,000 बच्चों ने नए सत्र में प्रवेश लिया है। शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य इस बार ऐसे बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने पर रहेगा जो किसी कारणवश पढ़ाई से दूर हैं या बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक भव्य योग शिविर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यमुनापुरम स्टेडियम बुलंदशहर में भी किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में योग को अपनाने और शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने की। इस अवसर पर सांसद भोला सिंह, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त मेरठ भानुचंद गोस्वामी और जिलाधिकारी बुलंदशहर कुमार हर्ष ने पौधारोपण भी किया। बीते दिनों कृषि विभाग द्वारा बुलंदशहर में विशेष 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के दूसरे और अंतिम दिन कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर द्वारा की गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और भारी संख्या में प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में जहां कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत और तकनीकी जानकारी दी गई, वहीं राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह दिलेर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं गिनाई। उन्होंने बताया कि सरकारें जनहित में कार्य कर रही हैं, बड़ा बदलाव देश में इन 12 वर्षों में हुआ है।
6: देखिए, पिछले 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, देश का विकास, देश का विश्वास और देशवासियों के लिए जन कल्याण, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम, जो काम 2014 से पहले 67 सालों में पुरानी सरकार नहीं किए थे, उससे दोगुना काम, दोगुनी योजनाएं, दोगुनी संख्या, सभी क्षेत्र में हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ाई है।
5: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते PATS को देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ATS टीम ने बुलंदशहर से 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक ATS को पिछले काफी समय से इन संदिग्धों की गतिविधियों के बारे में खुफिया इनपुट मिल रहे थे। पुख्ता जानकारी और सर्विलांस के आधार पर ATS की टीम ने बुलंदशहर में छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए संदिग्धों की पहचान मोहम्मद उमर पुत्र जुल्फिकार और फैजान पुत्र समीमुद्दीन के रूप में हुई। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की पुष्टि कानून व्यवस्था और ATS के आला अधिकारी ADG अमिताभ यश ने की है।
7: दिनांक 17 जून 2026 को ATS उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
5: ओमान खाड़ी में जहाज पर हुए अमेरिकन हमले से सकुशल बुलंदशहर जिले के रहने वाले सनी चौधरी ने गृह वापसी की, जो कि मर्चेंट नेवी में पिछले एक वर्ष से तैनात हैं। उनकी ड्यूटी पानी के जहाज पर गल्फ ऑफ ओशियन में चल रही थी। 11 जून को अमेरिकन नेवी ने गल्फ ऑफ ओशियन ओमान की खाड़ी में खड़े जहाज पर हमला कर दिया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी के कहने पर रेस्क्यू किया था। ओमान की इंडियन एम्बेसी की मदद से उन्हें भारत पहुंचाया गया है। 20 भारतीयों को सकुशल भारत भेजने की ओमान की इंडियन एम्बेसी ने एक्स पर फोटो सहित सूचना की पोस्ट भी डाली है। घर पहुंचने पर सनी चौधरी ने भारत सरकार का आभार जताया।
8: ओमान वॉरशिप द्वारा रेस्क्यू किया गया। उसके बाद जब हम सिनास पोर्ट पहुंचे, वहाँ इंडियन एम्बेसी ने हमारी जो भी सहायता हो सकती थी वो हमारी की और हमको ओमान से इंडिया के लिए भेजा गया। मैं हमारी भारत सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। समय सुबह के 9:25 और लीजिए लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है में प्रस्तुत है अर्पणा श्रीवास्तव के गाय रोहिलखंडी लोकगीत।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं अर्पणा श्रीवास्तव के गाय रोहिलखंडी लोकगीत।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं अर्पणा श्रीवास्तव के गाय रोहिलखंडी लोकगीत।

0: अभी हमारी श्रोता सुन रही थी लोक संगीत कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हमने आपको सुनवाए अर्पणा श्रीवास्तव के गाए रोहिलखंडी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। समय सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं के अनुरोध पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। उम्मीदों का दीप जलाइए, हर पल को खास बनाइए, दिल में नए सपनों को आकार दीजिए, यादों जज्बातों और मधुर सुरों के सहारे लीजिए, हाजिर हैं आपके गीत तुम्हारे। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत सभी श्रोताओं का आज के गीत तुम्हारे कार्यक्रम में, जहां कार्यक्रम लेकर आज आपके साथ है आपकी रेडियो साथी श्वेता भट्ट। और गीत तुम्हारे कार्यक्रम के साथ साथ अगले प्रसारण की कमाल संभालते हुए हमारे साथ हैं
1: मैं आप सभी की रेडियो साथी नेहा शर्मा। तो श्रोताओं, हम दोनों की ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए कीजिएगा हमें मैसेज।
1: जी हाँ, कीजिएगा हमें मैसेज, अपना नाम, पता और अपनी पसंद का गीत लिखकर भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए,
0: 9457078288। तो नेहा, अब करते हैं कार्यक्रम का आगाज इस खूबसूरत से गीत के साथ, जो हमने लिया है फिल्म मोहरा से पंकज उदास और साधना सरगम की मधुर आवाज में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे का ये पहला गीत हमने लिया था फिल्म मोहरा से। आवाजें थी पंकज उदास और साधना सरगम की, शब्द रचना थी इंदिवर की और संगीत था विजू शाह का। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी थी महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने। इसी गीत के लिए मैसेज के माध्यम से हमारे साथ जुड़े थे टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। एयरपोर्ट रोड वंतन नगर इंदौर से फरमाइश की थी इस गीत के लिए मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा से फरमाइश की थी द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा ने। पटेल नगर मलोट पंजाब से फरमाइश की थी रामेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया ने।
1: और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आई है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकरम और नफीसा परवीन की। अगला मैसेज हमें आया है गांव हिप्पर सोगा तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख की। एक और मैसेज हमारे पास आया है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, लिखने वाले हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। श्रोताओं, एक और मैसेज हमारे पास आया है, लिखने वाले हैं कलानौर से नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और कार्यक्रम की अगली पेशकश श्रोताओं हमने ली है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दर्द से। गीत लिखा है नक्श लायलपुरी ने और संगीत है खय्याम का।
2: और इस गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। अगला मैसेज हमें मिला है प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठन से। लिखने वाले हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया। जालना शहर से हैं सोमनाथ, गीता, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। नरेश पाल सिंह और इनके सभी साथी भी हमें मैसेज कर रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है मुंदीचक भागलपुर बिहार से। लिखने वाले हैं दिलीप कुमार सोनी। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास भेजी है गांव पाठर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे ने। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी की। अगला मैसेज है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नामाला और आरती कुमारी का।
1: और श्रोताओं, पत्रों के माध्यम से हमारे इन सभी श्रोताओं ने हमें फरमाइश की है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जेतेक बिरक और मीका बिरक, मेन रोड तेलहरा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, अनिल महेंद्र, सुनील साहिल और सुजाता पोहरकार। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खांडवा ग्राम लाहौरी से फरमाइश की कर रहे हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से फरमाइश की है विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें भेजा है सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी, आलोक जोशी और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
2: फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से है मोहम्मद वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकराम, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद फाजिल।
1: तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म दर्द का ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: कार्यक्रम गीत तुम्हारे हमारे सभी श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।
1: और श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, फिल्म है मेरे ब्रदर की दुल्हन। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है सुहेल सेन का। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है ग्राम पोस्ट चितावर वाया किरतपुर जनपद बिजनौर से अमित धीमान, मुकेश धीमान, अमिता प्रिंसी, खुशबू, आनंद किशोर धीमान, भागवत प्रसाद, जयप्रकाश, आरव, अव्या, अक्षत, अक्षिता एवं रेम्स कृष्णन ने। कस्बा उकेती बदायूं से फरमाइश की इसी गीत के लिए देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता और

0: शर्मा और निवान शर्मा, श्री गंगानगर से फरमाइश भेजी है बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार शर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहा है पट्टी महल बड़ौत यूपी से रामानंद कश्यप, विमलेश कश्यप, आर एन कश्यप, पाली राम भगत, आयुष आदित्य, राजेश उमा और इनके मम्मी पापा।
1: और श्रोताओं, इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है बिहार स्टेट से मोहम्मद याकूब आसमा, मोहम्मद यूसुफ आसमा, मोहम्मद सलीम आसमा, मोहम्मद कलीम आसमा और इनके सभी साथियों की। अगला मैसेज हमारे पास इसी गीत की फरमाइश के साथ आया है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। भेजने वाले हैं अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी और पायल जोशी। अगला मैसेज हमारे पास आया है पहलगाम कश्मीर से और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमारे पास आई है मजनू का टीला से। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। ये एक और मैसेज हमारे पास आया है विदर्भ श्रोता क्लब से। ये हमें मैसेज भेज रहे हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। अगला मैसेज हमारे पास आया है शाही मार्केट श्योहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात अदीब और कादिर चौधरी का। एक और मैसेज हमारे पास श्रोताओं इसी गीत की फरमाइश के साथ आया है, ये है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह का।
0: तो श्रोताओं लीजिए, इन सभी श्रोताओं के साथ आप भी सुनिए फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन का ये खूबसूरत गीत राहत फतेह अली खां की आवाज़ में।

0: मेरे ब्रदर की दुल्हन। श्रोताओं, इस फिल्म का एक गीत अभी आप सभी ने सुना राहत फतेह अली खान की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म प्रिंस से। आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में ये गीत है श्रोताओं, और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्री रामपुर से। भेजने वाले हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश, जीविका, और पूना वाले पुणे से हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने। अगला मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगी सारपुर से। मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून शाहिस्ता, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी का। एक और मैसेज है संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया का, ही हमें मैसेज लिख रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। फजिलका पंजाब से हैं, सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और इनके सभी परिवार के सभी सदस्य। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी।
1: अशोतों, इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, आलम शेख और चांदनी नाज। पाकुंड झारखंड से फरमाइश कर रहे हैं इस गीत के लिए श्वेता भगत, कीशु, ताशु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, मुन्ना भगत और कोटी भगत। उदयपुर राजस्थान से फरमाइश की है रामेश नाचानी, भारती नाचानी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। और यह हमारे स्थानीय श्रोता मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से रूपा, मंजू, तनु, प्रभा, स्वाति, आराध्या, विशाल, अगम्य और वैष्णवी वर्मा। चौक बाजार नजीबाबाद से फरमाइश कर रहे हैं राजेंद्र कुमार, तुषार कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सौरभ कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। दौलतबाग मुरादाबाद से जफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष, चैतन्य, मेघा हमें फरमाइश कर रहे हैं चंडीगढ़ से। और आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराव से। चंदन नगर सहारनपुर से फरमाइश मिली है सुरेश नारंग, आशु, सोनाली, प्रतिभ और कृषिव की। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं विलेज एंड पोस्ट राहुल नगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान और कशिश चौहान ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी पलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय और हैप्पी राय। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म प्रिंस का ये गीत आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत है सचिन गुप्ता का।

0: प्रिंस फिल्म का एक गीत हमारे श्रोताओं ने सुना आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म बिग ब्रदर से। श्रेया घोषाल और कुणाल की आवाज में ये गीत है और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है करणवीर हाउस भूचो कैचिया भटिंडा पंजाब से। लिखने वाले हैं प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन और अभिजोत की। और श्रोताओं, इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश भेजी है। ये हमें मैसेज लिख रहे हैं बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण और फुंदीबाई बागरी। अगला मैसेज हमारे पास आया है जेल रोड नजीबाबाद से। लिखने वाली हैं राधिका जाटव और प्रभा रानी जलोटिया। शहर दिल्ली से हैं मनमोहन चुग, मीठी चुग और खट्टी चुग। डुमराव से हैं वलीउल्ला अंसारी, राज अंसारी और फातमा नाज अंसारी। एक और मैसेज हमारे पास आया है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी का। अगला मैसेज हमारे पास आया है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश खोरवाल। और इसी गीत की फरमाइश के साथ हमारे पास मैसेज है शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल का। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षित, अभिषेक श्रीवास्तव की।
1: अशोताओं, पत्रों के माध्यम से हमारे साथ ये सभी श्रोता जुड़े हैं। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, मोहित और रोहित। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और इनका सभी समस्त परिवार। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं रामगंज खांडवा मध्य प्रदेश से विजय महोविया, संजय महोविया, कविता महोविया, विशाल, विवेक, सपना, शिवी, सलोनी, राजू चराटे और पेंटर बाबू। लदावली मुरादाबाद से फरमाइश कर रहे हैं अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना। बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। भवानी माता वाट खांडवा से ही एक और फरमाइश हमें मिली है अनिल विंचुंकर, मंगला शोभा विंचुंकर। उदयनगर से मोहित रतन पारखी, स्वीटी और मनस्वी रतन पारखी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतु, निहारिका और वंश बत्ता। गांधीबाग अकोला से राजेश कटंकर, वैशाली, कार्तिकी और इनके परिवार के सभी सदस्य। सरोजनगर अमरावती से कमरूला ठेकेदार और नसीम बेगम। सहारनपुर से राधा रामदेव, अभिषेक रामदेव और अर्पणा रामदेव। और ये एक और फरमाइश हमें मिली है उज्जैन एमपी से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन और दिलीप सिंह पवार की। आगरा से सरिता चौरसिया, सुमित, अबीर और सुजाता। ऐसे गीत को सुना चाहा है मनकारा मंडी बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से पनीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, ममता चौधरी, ओमवती भारती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म बिग ब्रदर से ये गीत श्रेया घोषाल और कुणाल गांजावाला के साथ उस्ताद सुल्तान खान की आवाजों में।

0: श्रोताओ, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। और कार्यक्रम में अगली पेशकश हमने ली है फिल्म कच्चे धागे से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है नुसरत फतेह अली खान का। और इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नावेद खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। और आप हैं नैना सत्यनारायण, कपिल, शोभा, सफलता, कान्हा और उनके परिवार के सभी सदस्य झालावाड़ राजस्थान से। और इस गीत को सुना चाहा है संगीत टाकिज शाहगंज आगरा से, महफूज अंसारी, फिरदौस, अब्दुल, हुमैरा, हिफ्जा, हबीबा, हलीमा और हसन। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान। शास्त्री नगर मेरठ से मैसेज किया है दिलीप शर्मा, अंजू शर्मा, सुगंधा शर्मा, धैर्य वत्स से, और राजस्थान से रानी झाओ और नीता झाओ। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार ने।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं धाड़ी नांदूर, नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। और यही गीत सुनने की फरमाइश हमारे पास भेजी है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। और श्रोताओं, यही गीत सुनने की ख्वाहिश हमारे पास आई है रेलवे रोड गंज टुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज, भाभी सरिता गौतम और फातिमा गाजी की। यही गीत सुनना चाहते हैं डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से हैं आर एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। अगला मैसेज हमारे पास आया है नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से अजीज़ भाई, मतीन भाई, अब्दुल रहमान, सैयद खलील, मुबीन भाई, मोहम्मद यासीन, शेख चंद, फारूक फूल वाले, मूसा करीम और शेख सलीम और इनके सभी साथी। और श्रोताओं, एक और मैसेज हमारे पास इसी गीत की फरमाइश के साथ आया है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहम और साथ में है मोहम्मद आलम हाशमी। अगला मैसेज है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू भाविक सिक्का। अगला मैसेज मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का है मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत कौशिकी, दीपाली युवान और आर के राजा।
0: तो श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म कच्चे धागे का ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। और नेहा, अगले गीत के लिए हमें किस किस श्रोता ने फरमाइश भेजी है?
1: जी हाँ, ये फरमाइश हमारे पास आई है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान की। और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। लिखने वाले हैं सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली, कुमार संदर्व, कुमार संवर्ध, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी हर्षिता देशमुख के। अगला मैसेज हमारे पास है कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नास, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान और सारिक अली खान की। और हमें मैसेज कर रहे हैं कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। अगला मैसेज है गांव जेवरा हिसार से, नाम है वीरेंद्र बिहार, शमशेर बिहार, सुरेंद्र, मनोज और इनके सभी साथी। गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से हैं गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद। अगला मैसेज है ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इसरार, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का। एक और मैसेज है अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोद पुरी और इनके सभी साथियों का। और श्वेता, कुछ पत्र हम आपके हाथ में भी देख रहे हैं, जरा बताइए कौन कौन हमारे श्रोता है।
0: ये फरमाइश हमें की है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक और आर्यन ने। इन्हीं के साथ फरमाइश कर रहे हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश, कृष्णा और पीहू और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये एक और फरमाइश है पत्र के माध्यम से मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से महेंद्र शाह, जितेंद्र शाह और मानसी शाह। पंडरिया छत्तीसगढ़ से आप हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल। मोहल्ला समाना सराय शेरकोट से ताहिर अंसारी, सलमान शरीफ अहमद और इनके परिवार के सभी सदस्य। शामबाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और योगेश घोड़के। कस्बा उगेती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता और उनके परिवार के सभी सदस्य। और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश कर रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। बीर शहर से फरमाइश की है प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल के साथ रामनिवास अग्रवाल ने। बक्सर बिहार से फरमाइश की है सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अकरम और अल्ताफ। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम आदिबा और दानिस अंसारी। सारीमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस डी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफताब अंसारी और उनके परिवार के सभी सदस्य।

सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलराड़ा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार। तो श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म बाजीगर का ये गीत कुमार सानू और अनु मलिक की आवाज़ में। गीत लिखा है देव कोहली ने और संगीत है अनु मलिक का।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का गीत तुम्हारे कार्यक्रम संपन्न करने की श्वेता को दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहें हमारे साथी नेहा के साथ अगले कार्यक्रम चित्रपट संगीत में, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और सुनते रहें आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र। हैव अ नाइस डे।

अभी हमारे सभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को आपकी साथी नेहा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हमने की श्रोताओं, और ये गीत हमने लिया था फिल्म जब भी मेट से। श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत था, इरशाद कामिल की शब्द रचना और संगीत प्रीतम का। कार्यक्रम में अब लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद आपसे फिर रूबरू होंगे गीत के इस सफर पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म टशन से। उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में ये गीत है, कौसर मुनीर की शब्द रचना और संगीत है विशाल शेखर का।

उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में आपने सुना टशन फिल्म का एक गीत। कौसर मुनीर के बोल थे और धुन थी विशाल शेखर की। श्रोताओं, वाकई कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें मंजिल से ज्यादा सफर मायने रखता है। जब कोई अपना साथ हो तो हर रास्ता आसान लगने ही लगता है और हर पल एक खूबसूरत याद बन जाता है। श्रोताओं, प्यार की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि वो दो दिलों को इस तरह से जोड़ देता है कि वो फिर हर ख्वाब साझा करने लग जाता है, और चाहे फिर बात जमीन की हो या फलक तक पहुंचने की तमन्ना हो। कार्यक्रम की अगली पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म जानाशीन से। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत है। प्रवीण भारद्वाज की शब्द रचना और आनंद राज आनंद का संगीत है।

जानशीन फिल्म का एक गीत हमारे श्रोताओं ने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में। प्रवीण भारद्वाज के बोल थे और आनंद राज आनंद का संगीत। वाकई श्रोताओं, प्यार जो है वो सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि जिंदगी को मायने देने वाला एक अलग ही रिश्ता है। जब कोई इंसान हमारी खुशियों की वजह बन जाए, हमारी हर दुआ में शामिल हो जाए और उसकी मौजूदगी से ही हर दिन हमें खास लगने लगे, तब सचमुच समझ लेना चाहिए कि वो इंसान हमारे लिए बहुत खास है और वही हमारी जिंदगी बन गया है।

कसूर फिल्म में भी हमारे श्रोताओं ने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक को। समीर के लिखे बोल थे और नदीम श्रवण का संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म आक्रोश से। जावेद अली की आवाज में ये गीत है, इरशाद कामिल की शब्द रचना और संगीत प्रीतम का है। श्रोताओं, कभी कभी कोई शख्स हमारी जिंदगी में इस तरह शामिल हो जाता है कि फिर उसके बिना हर खुशी हमें अधूरी सी लगने लगती है, और तब जाकर हमें एहसास होता है कि वो सिर्फ हमारा हम सफ़र ही नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी बन चुका है, हमारी पूरी दुनिया बन चुका है। और उसको खोने के डर से या उसको उसके दूर जाने का जो डर है, वो हमारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए घर कर जाता है।

आक्रोश फिल्म का एक गीत हमारे श्रोताओं ने सुना जावेद अली की आवाज में। श्रोताओं, इरशाद कामिल की शब्द रचना थी और संगीत था प्रीतम का। श्रोताओं, जब भी किसी रिश्ते की शुरुआत होती है तो दिल में किसी के लिए खास जगह बन ही जाती है। जब भरोसा, अपनापन और मोहब्बत एक साथ मिल जाए तो दिल खुद ब खुद कह उठता है कि अब तुम्हारी दुनिया सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उसका हिस्सा हम भी बन चुके हैं। और इसी प्यारे से एहसास के साथ सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। गीत है फिल्म आरजू से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत है। आनंद बख्शी के बोल हैं और अनु मलिक का संगीत।

अर्जु फिल्म का एक गीत हमारे श्रोताओं ने सुना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। श्रोताओं, प्यार का एहसास जो है ना, वो अक्सर बिना किसी आहट के ही दिल में उतर जाता है। कब कोई अपना सा लगने लगता है और कब दिल उसकी धड़कनों से जुड़ जाता है, इसका हमें पता ही नहीं चलता। और इसी एहसास को समर्पित है हमारा कार्यक्रम का ये अगला गीत। कार्यक्रम का गीत है ये फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं ने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। श्रोताओं, इस गीत के बोल समीर ने लिखे थे और संगीत दिया था अनु मलिक ने। साथियों, दिल का ना अपना ही अलग अंदाज होता है। जब किसी की मुस्कान, किसी की बातें और उसका साथ अच्छे लगने लगे तो दिल धीरे धीरे उसी के ख्यालों में खोने लगता है और फिर होता ये है कि हर धड़कन जैसे उसी का नाम लेने लगती है और हर पल उसी का इंतज़ार रहने लगता है। यही तो है प्यार की शुरुआत, जब बिना किसी वजह के दिल बेचैन भी हो और खुश भी हो जाए। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म कहो ना प्यार है से ये गीत। कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत है, सावन कुमार ने शब्द रचना की है और धुन है राजेश रोशन की।

श्रोताओं, कभी कभी मोहब्बत को अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, बस एक नज़र, एक मुस्कान और एक खामोशी ही काफ़ी होती है। जब दिल किसी के एहसासों में डूब जाए तो हर मौसम हसीन और हर पल खास लगने लगता है। फिर बस जी चाहता है कि वक्त यहीं ठहर जाए और सामने वाला बस हमारी आंखों के सामने ऐसे ही बैठा रहे। कार्यक्रम में अब वक्त है अंतिम गीत का। श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म फना से, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में श्रोताओं आपने सुना फना फिल्म का एक गीत। गीत के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने और संगीत जतिन ललित का था। और श्रोताओं इसी गीत के साथ अब वक्त हो चला है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आपसे विदा लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के 12 बजे हैं श्रोताओं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में।

श्रोताओं, आज संध्या 5:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति से बात आकाशवाणी के साथ, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बातचीत।

आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनेंगे हमारे श्रोता। और श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 12:05 पर हमारे श्रोता सुनेंगे श्रोताओं के ही व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम जिंदगी लाइव, और जिसके अंतर्गत आज हमने विषय लिया है वो मुसाफिर जो परदेश चले गए।

कार्यक्रम महिला जगत का प्रसारण समय रहेगा आज दोपहर 1:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे लघु नाटिका ससुराल बेटी का कल और समाज। प्रतिभागी हैं प्रियंका त्यागी, सुनीता नेगी, दीपांशु, अलीना मेहताब। निर्देशन अंकित सैनी का है और प्रस्तुतकर्ता हैं शोभित शर्मा।

आज दोपहर 2:30 पर सुनना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कार्यक्रम एक ही गीतकार, जिसमें आज के हमारे गीतकार हैं इंदिवर। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी आज संध्या 5:30 पर, जिसमें आज क्रम रहेगा कुछ खास है आज गीत आपके नाम रहस्य सीरीज और फिल्म संगीत का। किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत आज संध्या 6:05 पर, जिसमें आज क्रम रहेगा लोकगीतों व रागनियों के सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी का।

कार्यक्रम विविधा में सुनिएगा डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा की वार्ता, वर्तमान में काव्य मंचों की दशा व दिशा। सुगम संगीत में आज हमारे श्रोता सुनेंगे मोहन कुमार गुप्ता के स्वर में भजन। समय रहेगा संध्या 7:32 पर।

फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे संध्या 6:55 पर छाया गीत में, रात्रि 8 बजे गीत संध्या में और रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से के अंतर्गत। श्रोताओं, ये तो थी रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ खास कार्यक्रमों के संदर्भ में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:05 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जिंदगी लाइव। जिंदगी में कुछ ऐसे सफर होते हैं जो मंजिल तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन दिल को वहीं छोड़ आते हैं जहां से सफर शुरू हुआ था। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जिंदगी लाइव में। आज आपके साथ मैं हूं आप सभी की रेडियो साथी नेहा शर्मा। साथियों, हर किसी को कभी ना कभी किसी ऐसे मोड़ पर जिंदगी लेकर जाती है जहां उसे अपने घर, अपने शहर और अपने लोगों से दूर जाना पड़ता है। साथियों, आज का हमारा विषय है वो मुसाफिर जो परदेश चले गए, यानी कि परदेश सिर्फ कोई दूसरा शहर या दूसरा देश नहीं होता श्रोताओं। परदेश वो जगह है जहां इंसान अपने सपनों के लिए जाता तो है, लेकिन अक्सर अपना दिल पीछे छोड़ जाता है।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अर्पण फिल्म का एक गीत अभी हमारे श्रोताओं ने सुना। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त है एक जरूरी संदेश का। संदेश के बाद एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे कार्यक्रम जिंदगी लाइव में।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी लाइव में। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं परदेस की। श्रोताओं, किसी के लिए परदेस रोजगार है, किसी के लिए पढ़ाई, किसी के लिए जिम्मेदारियां और किसी के लिए अपनों से दूर बिताया गया एक लंबा इंतजार। साथियों, अगर आप भी कभी परदेस गए हैं या आपका अपना कोई परदेस में है, तो उनसे जुड़ी रोचक यादें या कोई किस्सा जो इस वक्त आपके जहन में हो, तो आप हमें लिख भेजिए व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, जिसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा नंबर। नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9457078288। तो श्रोताओं, जब तक आप हमें करते हैं मैसेज और साझा करते हैं अपनी परदेश से जुड़ी कुछ रोचक बातें, हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। गीत है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRVP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं के प्यार भरे मैसेज हमें आने शुरू हो गए हैं। ये एक मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का। ये लिखते हैं कि आज से 10 साल पहले की बात है, मेरे बड़े भाई विदेश गए थे। 2 साल बाद मेरे बड़े भाई ने मुझे भी वहीं पर बुलाया था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया और जाने नहीं दिया। माँ ने कहा कि पहले भाई को घर पर बुलाओ, उनकी बहुत याद आती है, और फिर आपको जाने दूंगी। फिर मैंने अपना काम घर पर ही जमा लिया, जिससे मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप जी। वाकई सच कहें तो परदेश जाकर इंसान पैसा तो कमा लेता है, लेकिन माँ का वो आंचल, पापा की वो डांट, भाई बहन की वो नोक झोंक और अपने आंगन की वो खुशबू के बिना हमेशा ही एक अधूरापन सा रहता है, एक खालीपन सा दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस जाता है। ऐसे में घर वाले यही कहते हैं कि घर आ जाओ, आपकी बहुत याद सताती है।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म में आपने सुना पमीला चोपड़ा और मनप्रीत कौर को। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव और आज हम बात कर रहे हैं परदेस की, यानी उन मुसाफिरों की जो परदेस चले गए। इसी क्रम में एक मैसेज हमें मिला है विलेज एंड पोस्ट राहुल नंगली से, आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान, राघव चौहान और नैतिक चौहान का। ये लिखते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए कुछ स्टूडेंट्स परदेश में रहते हैं, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, लेकिन वे कहते हैं कि जब उन्हें कोई अपने देश का आदमी मिलता है तो उससे मिलकर उन्हें बड़ी खुशी होती है। वो चाहे किसी भी स्टेट का हो, उन्हें वो अपना ही लगता है। वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमसे भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि हमारे देश की वहाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है, तो वो बासमती चावल का नाम बताते हैं और उन्हें अपने देश की बहुत याद आती है। कई कई साल में घर आते हैं। ऐसे ही हमारे देश के सैनिक हैं जो घर से दूर रहकर देश की सेवा करते हैं। वाकई सत्यवीर सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग परदेश चले जाते हैं वो कई कई साल बाद लौट कर आते हैं। हर परदेसी के मन में बस एक सपना होता है कि थोड़ा काम और कर लूं, फिर अपने घर लौट जाऊंगा। लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में कई बार वो थोड़ा और करते करते इतना उलझ जाते हैं कि सालों साल बीत जाते हैं और वो अपने घर आ नहीं पाते।

राजा हिंदुस्तानी फिल्म का एक गीत आपने सुना, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं परदेस की। ग्राम गधा रोना पोस्ट लंडोरा रुड़की से मदन गिरी जी हमें मैसेज कर रहे हैं और लिखते हैं कि मेरा एक बचपन का दोस्त था। बचपन से ही उसके ऊंचे सपने थे। वो कहता था कि मैं भी हवाई जहाज में यात्रा करूंगा और देश परदेश में घूम कर आऊंगा। मैंने उसे बहुत समझाया, जहां तक देश की बात है तो आप चाहे कहीं तक भी घूम जाइए, लेकिन परदेश की बात मत करिए। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी और उसने परदेश जाने का मन बना लिया। मैंने लाख समझाया लेकिन उसने बात नहीं मानी। और एक दिन आया कि वो हवाई जहाज में बैठकर अमेरिका रवाना हो गया। भारी मन से मैंने उसे एयरपोर्ट पर विदाई दी, पर उसके बाद संबंध खत्म से हो गए। और कुछ दिन बाद पता चला कि उसने वहीं पर शादी कर ली और वहीं घर बना कर रहने लगा। मुझे कभी कभी उसकी बहुत याद आती है। कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाती है, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। काफ़ी संवेदनशील सा आपने ये मैसेज हमें लिखा मदन गिरी जी। वाकई एक बात तो हर उस मुसाफिर के दिल में हमेशा रहती है जो परदेस में है, और वो बात है कि चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा अपने घर में, अपने दोस्तों में रहता ही है। वाकई श्रोताओं, परदेस सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां नई मंजिलें तो मिल जाती हैं लेकिन पुरानी गलियां हमेशा याद आती हैं।

परदेश फिल्म का एक गीत हमारे श्रोताओं ने सुना सोनू निगम की आवाज़ में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव, और कार्यक्रम में आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जिसके लिए नंबर है 9457078288। एक मैसेज हमारे पास आया है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी और तमन्ना परवीन का। ये लिखते हैं कि परदेश एक ऐसा शब्द है जिसके नाम से ही एक अजीब सी कशिश महसूस हो जाती है। मैं आज तक कभी परदेश नहीं गया, फिर भी परदेश के नाम से डर सा लगता है। हमारे अबू जी ने पूरी ज़िंदगी परदेश में ही गुजार दी है। जब हमारे अबू आते थे तो हमें बहुत खुशी होती थी, और जब वो जाते थे तो बहुत बुरा लगता था। वाकई ये स्वाभाविक सी बात है कि जब परदेश से कोई लौट कर अपना आता है तो बहुत खुशी होती है, और जब उसके जाने का समय होता है तो एक अकेला कोई इंसान नहीं रोता, बल्कि सारा परिवार एक साथ मिलकर आंसू बहाता है। श्रोताओं, एक और मैसेज हमारे पास आया है। ये हमें मैसेज लिख रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि मैं परदेश में तकरीबन 10 साल रहा हूँ, और आगे इन्होंने लिखा है कि मैं परदेश में तकरीबन 10 साल गुजार दिए सऊदी अरब में, 2 साल कुवैत में रहा, मगर मुझे बाहर की ज़िंदगी कोई ख़ास नहीं लगी। पैसा तो बहुत मिला, मगर पैसे की जगह तन्हाई और खालीपन इन्हें बहुत ज़्यादा प्रदेश में देखने को मिला। ये बिल्कुल सही बात है, प्रदेश में कोई अपना नहीं होता, वहाँ सिर्फ तन्हाई ही होती है जो हमारे साथ दिन और रात रहती है। श्रोताओं, जब कोई घर का सदस्य प्रदेश जाता है तो उसके साथ सिर्फ सामान नहीं जाता, उसके साथ जाती हैं माँ की दुआएं, पिता की उम्मीदें, हम सफ़र की याद और दोस्तों का साथ। और सबके मन में बस यही ख्याल होता है कि आप हमें प्रदेश जाकर भूल तो नहीं जाओगे।

देश की। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अपने नाम और अपने पते के साथ अपने जीवन में कुछ ऐसे पलों को लिखकर भेजिए जो परदेश से जुड़े हों। आपका कोई अपना कभी परदेश गया हो तो वो एहसास हमें लिखकर भेजिए, या आप खुद परदेश में गए हों तो आपने वहाँ जाकर क्या किया, क्या सीखा, क्या देखा, क्या पाया, क्या खोया, वो सब चीज़ें आप हमारे साथ साझा कीजिए। प्लीज़ अपना नाम और पता लिखने के साथ साथ ये सब बातें भी हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए, तभी हम आपका नाम और आपका मैसेज कार्यक्रम में शामिल कर पाएंगे। श्रोताओं, आज आधुनिकता का दौर है, मोबाइल, इंटरनेट और वीडियो कॉल का ज़माना है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब महीनों तक सिर्फ एक चिट्ठी का इंतज़ार होता था। डाके की घंटी सुनते ही लोग दरवाजे पर पहुंच जाते थे कि कहीं परदेश से कोई खबर आई हो, कोई पैगाम आया हो या कोई चिट्ठी आई हो कि घर कब आओगे।

बॉर्डर फिल्म में आपने सुना सोनू निगम और रूप कुमार राठौर को। श्रोताओं, प्यार और परदेश का रिश्ता थोड़ा सा मुश्किल हमेशा से रहा है, क्योंकि प्यार में जब प्रेमी परदेश चला जाता है तो दूरियां बढ़ जाती हैं, मुलाकातें कम हो जाती हैं।

सकती हैं, और उस वक्त दोनों के बीच जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक दूसरे पर भरोसा। इसीलिए तो कहते हैं कि जहाँ रिश्तों की डोर प्रेम से बंधी हो, या फिर जहाँ प्रेम की डोर भरोसे से बंधी हो, वहाँ दूरियाँ कभी बाधा नहीं बन सकती।

0: दोस्तों, घर की कीमत अक्सर तब समझ में आती है जब हम घर से बहुत दूर होते हैं, परदेश में रहते हैं। और मुसाफिर जो परदेश में रहते हैं, वो कोई दो शब्द के प्यार के बोल उनसे बोल दे तो उनके लिए वही दो शब्द बहुत मायने रखते हैं। याद रखिए श्रोताओं, परदेश इंसान को कामयाब तो ज़रूर बना देता है, लेकिन अपनों का साथ ही उस कामयाबी को मुकम्मल बनाता है। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम जिंदगी लाइव अब यहीं पर संपन्न करने की अपनी साथी नेहा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जिंदगी लाइव। और श्रोताओं, कार्यक्रम जिंदगी लाइव में आज हमने बात की उन मुसाफिरों की जो परदेश चले गए, यानी कि आज का हमारा विषय था परदेश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा

0: वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said, Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity, and strong people-to-people ties. The Prime Minister said he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. During the visit, Prime Minister Modi will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Meanwhile, Seychelles has backed India's bid for a permanent seat on the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Ford said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Mr. Rubio said the Trump administration viewed India as one of the United States' closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power.
4: Prime Minister Modi and what he's done. I mean, he leads a country that's making incredible gains economically and is really coming into its own as sort of a global power, a country that's increasingly accounted for on decisions being made on the global stage.
3: Punjab police has busted another cross-border illegal arms smuggling network in Amritsar and apprehended four accused today. Police have recovered 10 sophisticated pistols along with live cartridges from their possession. This is the second major arms recovery in Amritsar within the last few days. According to police, in both cases, the arrested accused were acting on the directions of a foreign-based smuggler and were receiving illegal weapon consignments through cross-border routes for onward supply to criminal elements. Further investigation is underway. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah inaugurates cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar. Mr. Shah, who is on a three-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Vice President C.P. Radhakrishnan says the strength of any economy across the world lies in the contribution of its MSME sector. Addressing an event on MSME Day 2026 in New Delhi, he said, in India, the MSME sector represents the courage and entrepreneurial spirit of first-generation entrepreneurs. The Vice President noted that the sector contributes nearly 50% of the country's total exports while consistently maintaining high-quality standards. U.S. Vice President J.D. Vance has warned Iran that any future aggression would be met with force. He said this hours after the United States carried out military strikes on Iranian targets. In a social media post, Mr. Vance said Iran had signed a ceasefire agreement and the United States had honored it. He added that any disputes over the agreement should be resolved through dialogue and warned that violence would receive a military response. The IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Assam and Meghalaya today. The Met Department predicted heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Konkan, Goa, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Kerala, Mahi, and in some parts of the northeast India. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in their final Group G match. Iran's Ramin Rezaian was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And that is the end of this news bulletin.
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडिया वेव, मीडियम वेव 366....
6: ये आकाशवाणी लखनऊ है. علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आज़ाद भारत में हुकूमतों से अपील की थी कि इक्तसादी तरक्की के लिए सबसे नीचे पायदान पर बैठे शख्स के मफादात को जहन में रखकर पॉलिसियां बनाई जानी चाहिए।
7: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया करके बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य आदर्श संस्कार समाहित हो सके इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
6: अयोध्या में श्रीराम मंदिर अतिया और चढ़ावा के मामले में मुबैना बेजाबतगियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तमाम आठ मुलजमीन को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम मुलजमीन को 29 जून तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुलजमीन में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की सिफारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की तरफ से श्री राम मंदिर में अतियात और चढ़ावे के मुबैना गबन के सिलसिले में FIR दर्ज कराई गई थी। मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद प्रोसिक्यूशन अफसर KC वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर कुल 79,85,000 रुपए मुलजमीन से बरामद हुए हैं। मुलजमीन को 29 जून को इंसदादे बदउनवानी की अदालत में पेश किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने FIR के इंदराज और श्रीराम मंदिर के अतिया केस में आठ मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद कहा कि अकीदे के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि SIT की रिपोर्ट मौसूल होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब के दौरान आवाम से खिताब करते हुए वजीर आला ने देवरिया में तरक्की पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत के नौजवान जो पहले मुलाजमतों के लिए हिजरत करते थे अब अपनी सलाहियतों और तवानाई को अपने इलाके में दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में महफूज माहौल की वजह से सरमायाकारी आ रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक प्राइवेट एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर सर्विस आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में 120 मिलियन से ज्यादा लोग मुफ्त सेहत की खिदमत हासिल कर रहे हैं।
7: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
6: तिब्बी और सेहत के शोबों में मौजूदा हुकूमत की तरक्की का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासत में पंचायत इंतखाबात में ताखीर और प्रधानों का मुद्दतकार बढ़ाने वाले हुक्म पर नाराजगी जाहिर करते हुए रियासती हुकूमत को तफसीली हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि पंचायतों का मुद्दतकार 5 बरस के लिए होता है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले आइंदा इंतखाबात हो जाने चाहिए। ये तबसरा जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की रिट पर समाप्त करते हुए किया। रिट में रियासती हुकूमत के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन अहकामात को चैलेंज किया गया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947 की दफा 12(3)(a) का हवाला देकर इंतखाबात टाल दिए गए और प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम जारी रखने की इजाजत दी गई। रियासत में शदीद गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून कल रात से मशरकी उत्तर प्रदेश के कई अजला में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद 30 जून से 3 से 4 दिनों तक रियासत भर में गरज चमक के साथ बड़े पैमाने पर बारिश मुतवक्के है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
8: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम

314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 1:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार, कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोताओं को। श्रोता बहनों, आप कुशल से होंगी अपने परिवार के साथ गर्मी के इस मौसम में। इस उम्मीद के साथ मैं सुनीता नेगी स्वागत करती हूं आप सभी का आप ही के कार्यक्रम महिला जगत में। बहनों, लगातार आप कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं और आज भी हमारे कार्यक्रम के साथ बनी रहिएगा, क्योंकि आज एक लघु नाटिका आपके लिए हम लेकर आए हैं। माह के चौथे शनिवार में आप लघु नाटिका हमारे कार्यक्रम में सुनती हैं। साथ ही बहनों, मनोरंजन जानकारी तो हम आपको देते ही हैं। तो बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आधी आबादी की आज की नायिका की। श्रोता बहनों, आज की आधी आबादी की नायिका एक लोक गायिका है जिन्होंने अपनी लोक संस्कृति को संरक्षित किया है। उसके संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रही हैं और उनको लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार तथा विलुप्त होती सांस्कृतिक विधाओं जैसे जागर, थड़िया, चौंफला, इनके संरक्षण संवर्धन हेतु हाल ही में कला एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संगीत नाटक अकादमी युवा पुरस्कार 2024-2025 उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से नामित किया गया है। श्रोता बहनों, इस लोक गायिका का नाम है हेमा नेगी करासी और ये उत्तराखंड राज्य से हैं और इन्होंने अपनी लोक गीत की प्रस्तुतियां आकाशवाणी नजमाबाद से भी पूर्व समय में दी हुई हैं। ये दूरदर्शन और आकाशवाणी की कलाकार भी हैं बहनों। और श्रोता बहनों, और अधिक जानकारी इनके बारे में आपको देते हैं क्रम आधी आबादी से के अंतर्गत। तो चलिए सुनते हैं आज का ये क्रम।

श्रोता बहनों, ये स्वर है एक लोक गायिका का। जी हाँ, ये लोक गायिका है उत्तराखंड राज्य की हेमा नेगी करासी। श्रोता बहनों, हेमा नेगी करासी आज अपने लोक संगीत के लिए उत्तराखंड राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी संस्कृति को एक पहचान दिला रही हैं। हेमा नेगी करासी मुख्य रूप से जागर लोक विधा को गाती हैं और हेमा नेगी करासी का जन्म बहनों 5 अप्रैल सन 1984 को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि ब्लॉक के टुकखिंड गांव में हुआ। हेमा नेगी करासी उत्तराखंड की लोक जागर गायिका हैं। इसके साथ ही ये यहाँ के पहनावे को भी एक पहचान दिला रही हैं। अपने लोक पारंपरिक पहनावे के साथ ये जब मंचों पर गाती हैं तो लोग झूम उठते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन होता है।

इन्होंने पारंपरिक गढ़वाली, कुमाऊनी और जानसारी संस्कृति और जागर को देश विदेश तक पहुंचाने का कार्य किया। उत्तराखंड सरकार द्वारा सर्व श्रेष्ठ लोक गायिका का सम्मान और प्रतिष्ठित संगीत नाट्य अकादमी युवा पुरस्कार से भी हेमा नेगी करासी को सम्मानित किया जा चुका है। कई संगीत एल्बम और स्टेज परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। गढ़वाल की गायिका जिसने विदेशों तक पहुंचाया है जागरों के स्वर को। उत्तराखंड गढ़वाल की ऐसी लोक गायिका जिसने विदेशों तक में अपने जागरों से धूम मचा दी है। श्रोताओं, वो बेटी जिसने कम उम्र में पिता को खोया, गरीबी में जीवन जिया, आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उत्तराखंड के वास्तविक लोकगीत संगीत जागर पारंपरिक रूप से जो गाती हैं, एक ऐसी लोक गायिका उत्तराखंड की जिसे लोक विधाओं की समझ है, एक ऐसी महिला लोक गायिका जो पारंपरिक लोक संगीत से बिना छेड़छाड़ किए उत्तराखंड के लोक संगीत गीत और जागर को गा रही हैं। जागरों में मौलिकता और बोली में ठेठपन के कारण उन्हें आज विश्व भर में पसंद किया जा रहा है।

0: विदेशी धरती पर हेमा जागर लोकगीत गाकर उत्तराखंड संस्कृति को पहचान दिलाने का काम कर रही हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड, दुबई, इंग्लैंड, जापान में भी लोक संस्कृति के रंग बिखेरे हैं। अभी भी लगातार संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण हेतु जागर लोकगीत, मांगल गीत, पौराणिक गाथाओं को भी वो सजो रही हैं, मंचों पर गा रही हैं। हेमा नेगी करासी ने कब और कैसे संगीत की ओर रुख किया जानते हैं।
1: जब मैं 4 साल की थी तो सबसे पहले मैंने स्कूल में गाया था एक गाना, दे दिया बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। तो जब मैंने वो गाया तो स्कूल में हर किसी ने उसको पसंद करा कि मतलब बहुत अच्छा गाती है लड़की, बहुत अच्छा गाया इसने। धीरे धीरे मैं बस ऐसे ही गाती रही स्कूल टाइम पे, फिर गांव में जैसे रामलीला हो या कोई भी शुभ कार्य होते थे तो गाती रहती थी। काफ़ी लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप अच्छा गाते हैं, आप मतलब गाते रहना। तो फिर मुझे भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि मुझे गाना चाहिए अपनी लोक संस्कृति के लिए। तो हमारे उत्तराखंड के जो भी पारंपरिक लोकगीत हैं जैसे, तो मैं पहले से ही वही गाते थे।
0: हेमा नेगी करासी किसे अपना आइडल सिंगर मानती हैं? कैसे उन्होंने हेमा को प्रभावित किया?
1: उत्तराखंड में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही मतलब हमारे जो बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े हमारे उत्तराखंड के जागर सम्राट, सुर सम्राट रहे हैं, जैसे चंद्र सिंह राय जी, जिन्हें मैंने बचपन से सुना है। मैं उन्हें बहुत दिल से मतलब बहुत लाइक करती हूँ। और उनका एक दो गाना गाया भी था, मैणा घसियारी, जिसको मैं जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तो उस टाइम पे मैंने मंचों में उसे बहुत गाया था। और फर्स्ट टाइम मेरी गिर गेंदुआ जब मेरा एल्बम रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय सर ने मेरे गिर गेंदुआ एल्बम में डोंगर बजा रखा है। तो उस टाइम मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि चंद्र सिंह राय जी मेरे गाने में डोंगर बजा रहे। उनके सामने मतलब डर गई, अजीब सा हो गया मुझे कि मैं सर के सामने कैसे गाऊं। फिर मैंने गाया था, उन्होंने कहा बहुत बहुत अच्छा बेटा, मैंने जागर गाया था वहां पर नंदा का, अब हुएगी गौरा ये दीवा देने बारे वाला। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, उन्होंने कहा था बेटा आप अच्छा कर रही है और आगे काफी अच्छा मुझे उम्मीद है कि आप करोगे। फिर हमारे नेगी जी हैं, प्रीतम भाई जी हैं और बसंती बिष्ट जी हैं, जिन्हें भी मैं बहुत सम्मान देती हूं। उस टाइम पे जिस टाइम पे लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं जाना देते थे, उस टाइम पे उन्होंने एक जो अपनी संस्कृति के लिए एक ध्वज वाहक बन के जो काम किया है, तो उनकी भी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे लिए सब आइडल है, मैं सबको अपना पूजनीय मानती हूँ और उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करती हूँ।
0: लोक गायिका बनना हेमा नेगी करासी का सपना था, लेकिन इससे पहले भी वो कुछ बनना चाहती थी। और कब लगा हेमा को कि गायक बनना है और कैसे इसकी शुरुआत?
1: बचपन से पढ़ाई लिखाई में ठीक थी, अच्छी थी, मतलब स्कूल से भी मेरे टीचर्स लोग मुझे बहुत लाइक करते थे और गेम्स में भी मैं काफी रही हूँ। स्कूल टाइम से मैं गाना वाना गाती थी, बट ये था कि मतलब मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं इस लाइन में इतना अच्छा, मतलब मुझे सबका प्यार आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि मेरा कुछ और ही था। आर्मी का मुझे बड़ा शौक था, पुलिस में भी मैंने अप्लाई करा था। एक बार मैंने SI का टेस्ट दिया था, उसमें मैं 1 नंबर से रह गई थी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि शायद नहीं था मेरे नसीब में। बट उसके बाद मैं सजल में लगी, वहाँ पे अकाउंटेंट में मेरा चयन हुआ था। और उसके बाद मैं राज्य संपत्ति में भी मैंने जॉब करी है, लेकिन मैंने दोनों नौकरियां छोड़ दी थी सिंगिंग के लिए। फिर बाद थोड़ा फैमिली ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस वजह से मैंने फिर इस लाइन को चुना।
0: आज उत्तराखंड से पूरे देश में हेमा नेगी करासी स्टेज शो कर रही हैं और अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में भी उत्तराखंड के लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार गायन के माध्यम से कर रही हैं।

0: हेमा नेगी करासी ने विशेष रूप से जागर गायन और आछेरी गीतों से अपनी पहचान बनाई है। श्रोता बहनों, उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोक गायिका हेमा नेगी करासी को संगीत नाट्य अकादमी द्वारा हाल ही में प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान उत्तराखंड के लोक संगीत जिसमें जागर, थड़िया और चौंफला लोक गीतों को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हेमा नेगी करासी, उन्होंने पारंपरिक उत्तराखंडी वेशभूषा जैसे पाखला, आंगड़ी को मंच पर गर्व से पहना, अपनी संस्कृति को ही उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाया। हेमा नेगी करासी आज भी अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ अपने लोकगीतों को मंचों पर गाती हैं। उनका कहना है, जब तक वो जीवित रहेंगी तब तक अपनी संस्कृति के लिए इसी प्रकार से उसे बढ़ावा देने के लिए कार्य करती रहेंगी।
1: मेरा नाम है हेमा नेगी करासी, मैं लोक गायिका हूँ उत्तराखंडी, और उत्तराखंड ही नहीं, मैं विश्व के मंचों पर भी अपने उत्तराखंड की इस लोक संस्कृति, इस परंपरा, जो हमारा पहनावा है, जो हमारे आभूषण है, इनको प्रचार प्रसार करने का काम करती हूँ। और मैं जीवन भर, जब तक मेरी अंतिम सांस रहेगी तब तक मैं अपने उत्तराखंड की स्माती और थाती के लिए काम करती रहूंगी।
0: तो उत्तराखंड की लोक संस्कृति की संवाहक, उसका संरक्षण और संवर्धन करने वाली हेमा नेगी करासी को उनकी सभी उपलब्धियों के लिए हम भी बधाई देते हैं आज के क्रम आदि आबादी के माध्यम से।

श्रोता बहनों, अभी आपने सुना क्रम आधी आबादी से। उम्मीद है हेमा नेगी करासी के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। और बहनों, कार्यक्रम में अब सुनवाते हैं आपको कुछ जरूरी संदेश।

0: बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: श्रोता बहनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम महिला जगत में। बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो रहा है आपको आज की लघु नाटिका सुनवाने का। नाटिका बहनों आप महीने में एक बार चौथे शनिवार को सुनती हैं, तो हो जाइए तैयार सुनने के लिए लघु नाटिका ससुराल बेटी का कल और आज। नाटिका में प्रतिभागी कलाकार हैं प्रियंका त्यागी, सुनीता नेगी, दीपांशु और अलीना मेहताब। निर्देशक अंकित सैनी, प्रस्तुति शोभी शर्मा, आलेख सुनीता नेगी का है। तो सुनवाते हैं बहनों लघु नाटिका ससुराल बेटी का कल और आज।

0: हो चलो भाई, फाइनली यार सौरभ की शादी बहुत अच्छे ढंग से निमट गई।
1: और दुल्हन के परिवार ने इतना अच्छा इंतजाम किया था ना कि सारे बाराती खुश हो गए। और भाई खाने पीने का तो इंतजाम बहुत ही बढ़िया था। चाट के स्टॉल से तो मैं ऐसे चिपक गई थी, इतनी चटपटी चाट थी ना, बस क्या बताऊं।
2: देखो ना, समय का पता ही नहीं चला। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ रहते रहते, सारा सामान भी बिखरा पड़ा है मेरा, कहाँ कहाँ है।
0: अरे मम्मी जी आइए ना, बैठिए ना, ये कपड़े एक तरफ रखिए और कुछ देर हमारे साथ बैठिए ना।
2: अरे हाँ बेटा, बैठने का तो मेरा भी मन है, लेकिन क्या करूं, अब जाने की तैयारी भी तो करनी है मुझे लखनऊ वापस। और देखो ना, शादी के माहौल में सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है।
0: अरे मम्मी जी ये क्या अभी से जाने की बातें कर रही हैं आप? अभी तो कुछ दिन रुकिए ना, आपको पूरी दिल्ली घुमाएंगे हम।
1: हाँ, मैंने तो बोल दिया है माँ से कि इस बार आई हो तो महीना दो महीना तो हमारे साथ रुकना ही पड़ेगा।
2: अरे कहाँ बेटा, तुम्हें तो पता है ना, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। वो तो ट्रेन की जरा टिकट कैंसिल हो गई थी, इसलिए 2 दिन मुझे मजबूरी में रुकना पड़ा।
0: अरे मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको आपकी बेटी के घर का पानी पिला कौन रहा है। हम तो आपके लिए सोडा, बिस्लेरी की बॉटल और भी बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे, बस आप रुक जाइए। बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, और देखिए ना सुहानी को भी कितनी खुशी हो रही है आपके आने से।
1: हाँ माँ, आप भी पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ गई हो बस।
3: क्या बातें हो रही हैं भाई समधन जी की, हमारे बच्चों के साथ। अच्छा ये लो, सबके लिए कोल्ड कॉफी बनाकर ले आई हूँ मैं।
2: अरे अरे बहन जी, आपने क्यों तकलीफ की, मुझसे कह दिया होता मैं बना लेती कोल्ड कॉफी।
3: अरे बहन जी, इसमें तकलीफ कैसी, मेरे अमन को तो मेरे हाथ की कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है, इसीलिए कभी कभी बना लेती हूँ।
1: वाकई मम्मी जी, कोल्ड कॉफी तो बहुत अच्छी बनी है।
2: अरे बहन जी, अभी बच्चे और मैं यही बातें कर रहे थे कि आपके छोटे बेटे सौरभ की शादी बड़ी धूमधाम से हुई है, और बारातियों के स्वागत में तो लड़की वालों ने कोई कमी नहीं रखी, सच में मजा आ गया।
3: हाँ भाई, अब लड़की वाले हैं तो इतना तो उनको करना ही चाहिए।
1: अरे माँ क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी।
2: अरे बेटा कुछ नहीं बेटा, अभी इस उम्र में सर्दी खांसी तो लगी ही रहती है, उम्र का तकाजा है ना।
3: क्या सिर्फ खांसी, मेरे तो भाई घुटनों में दर्द रहता है, उठा बैठा भी नहीं जाता बिल्कुल।
2: अरे आपके तो घुटनों में ही दर्द रहता है, मुझे तो डायबिटीज भी हो गई है बहन जी।
3: अब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर तो सभी को है, पता है मुझे तो थायराइड भी है।
2: अरे थायराइड के साथ साथ मुझे तो हाइपरटेंशन भी है,
3: मेरे तो कान भी खराब हो गए हैं, लगता है हियरिंग एड लगानी ही पड़ेगी।
2: और मुझे तो अर्थराइटिस

0: गया है धीरे धीरे।
1: वो आपको कैसे हो सकता है, घुटनों में दर्द तो मेरे रहता है।
0: अरे नहीं, आपको क्या पता, मेरे भी बहुत दर्द रहता है।
2: उपमाना मेरे अमन को बहुत पसंद है,
0: पर सुहानी तो बता रही है उसे आलू के पराठे बहुत पसंद है। अब मैं तो वही बना रही थी।
1: नहीं, उपमा उसे पसंद है।
0: अरे अरे, आप उपमा में ये चीनी क्यों मिला रही हो?
1: अरे बहन जी, जीवन में थोड़ी मिठास होनी चाहिए, कड़वाहट किसे पसंद है।
3: माँ, बन गया क्या नाश्ता?
0: हाँ हाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ, ये लो आलू का पराठा, बड़े प्यार से बनाया है मैंने आपके लिए।
1: नहीं नहीं, पहले ये उपमा खाएगा।
0: नहीं, पहले पराठा खाएगा।
1: नहीं, पहले उपमा।
0: पराठा।
1: पहले उपमा खाएगा मेरा बेटा अमन।
4: अरे मेरी माताओं, इधर लाओ आप दोनों, ये रहा पराठा और ये रहा इसके ऊपर मैंने रखा उपमा। अब इसका बनाया मैंने रोल और अब दोनों आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये गया मेरे मुंह में और मेरा पेट फुल। आप खुश है ना आप दोनों?
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं।
1: पर मेरा उपमा ज्यादा स्वादिष्ट है ना अमन?
0: नहीं, मेरा पराठे का टेस्ट ज्यादा अच्छा आया होगा। अच्छा चलो, अब मैं किचन साफ कराती हूँ।
1: नहीं नहीं, मैं करूंगी, आप क्यों करेंगी?
0: अरे बहन जी, सुहानी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, उसकी मीटिंग चल रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपका हाथ ही बटा देती हूँ किचन में आके, मैं तो इसलिए आ गई थी।
1: तो चलिए, मैं भी बर्तन धुल देती हूँ, दोनों चलते हैं किचन में।
0: हाँ ठीक है, और थोड़ी सी बातें भी कर लेंगे। सुहानी, सुहानी बेटा।
5: हाँ माँ।
0: बेटा देखो, मैंने तुम्हारे लिए आम का अचार बना के रख दिया है, उसको खा लेना। और देखो, तुम्हें गुड़ वाली खट्टी मीठी चटनी बहुत पसंद है ना, मैंने तुम्हारे लिए वो भी बना दी है।
5: ठीक है माँ, ठीक है, बाद में देख लूंगी मैं।
1: अरे क्या बना रही हैं बहन जी? पोहा। ये लीजिए कड़ी पत्ता और इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल दीजिए, टेस्ट और बढ़िया हो जाएगा।
0: नहीं नहीं, मैं नहीं डालती चीनी तो।
1: ओहो, तभी तो।
0: मतलब?
1: अरे कुछ नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। आप तो आज जा रही हैं ना, सुहानी के लिए ये सब बना रही हैं?
0: हाँ, उसे नाश्ते में पोहा बहुत पसंद है ना, और सोचा तो ये था कि पापड़ चटनी चिप्स भी बना लूंगी, लेकिन अब वक्त ही कहाँ बचा है।
1: तो क्या हुआ, बनाकर भिजवा दीजिएगा। मैं तो भाई मेरठ से हर महीने कुछ ना कुछ बनवा कर भिजवाती रहती हूँ, बच्चे दोनों वर्किंग है तो खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते हैं। अमन के लिए घर का बना कुछ भेज देती हूँ, बस इसी से दिल की इच्छा पूरी कर लेती हूँ।
0: सुहानी की शादी के बाद पहली बार इतने दिन उसके साथ रह पाई हूँ, वरना वो तो आ ही नहीं पाती। लगता है इस बार उसे बुलाने के लिए बीमारी का बहाना बनाना पड़ेगा। ओहो चलो, उसको टेस्ट करा कराती हूँ। बेटा सुहानी, अपना और अमन का ख्याल रखना।
5: माँ, अमन अपना ख्याल खुद रखेगा।
0: ठीक है, पर काम के चक्कर में खाना टाइम से खा लेना दोनों। अमन आ गए तुम? चलो, ट्रेन का टाइम हो गया।
4: मम्मी जी, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, कुछ दिन और रुक जाइए ना, सब मिलकर बहुत एंजॉय करेंगे। आपको दिल्ली भी तो घुमाना है।
0: इतनी गर्मी में दिल्ली घुमाना, बाप रे बाप। पर अब तो टिकट भी आ गई ना
1: सुहानी।
5: तो क्या हो गया माँ, टिकट तो दोबारा भी आ सकती है, रुक जाइए ना।
1: अरे जाने दो इन्हें, क्यों रोक रहे हो बेमतलब।
0: हाँ हाँ, देखिए ना कैसे एंड टाइम में बच्चे जिद कर रहे हैं मेरे से।
1: हाँ हाँ, इनके तो बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, इनका तो न जाने लाखों का नुकसान हो जाएगा, और इनको मीटिंग भी तो करनी होगी।
0: मेरी तो कोई मीटिंग नहीं है, ना ही कोई बिजनेस है।
1: अच्छा, फिर तो कोई खास इवेंट होगा जो आपके बिना नहीं हो सकता है ना, या आपकी खेती में फसल सूख रही होगी।
0: ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप?
1: आप जो ये सोचकर जा रही हैं ना कि लड़की के घर में हूँ, ये कौन सा समझदारी की बात है। देखिए बहन जी, हम 2026 में जी रहे हैं, ना कि 1930 में। जमाना बदल रहा है, और अगर लड़के की माँ उसके पास आकर रह सकती है तो लड़की की माँ क्यों नहीं रह सकती भला। और आप तो ये कहती हो ना कि लड़की के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, तो ये सब अब पुरानी बातें हैं। आज रात के लिए मैंने कुछ स्पेशल डिनर प्लान किया है,

0: मनाएंगे।
1: सच में? अब आप इतना कह रही हैं तो रुक ही जाती हूँ, पर मेरी एक शर्त है।
0: शर्त? कैसी शर्त?
1: आप ना हर चीज में चीनी नहीं डालेंगी,
0: बस थोड़ी सी। श्रोता बहनों, अभी आप सुन रही थी लघु नाटिका ससुराल बेटी का कल और आज। प्रतिभागी कलाकार थे प्रियंका त्यागी, सुनीता नेगी, दीपांशु और एलिना मेहताब। निर्देशक अंकित सैनी, प्रस्तुति शोभित शर्मा, आलेख सुनीता नेगी का था। बहनों, कैसी लगी आपको नाटिका हमें भाई जरूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। और बहनों, महिला जगत कार्यक्रम में और भी आप कार्यक्रम जो सुनती हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, आपके प्रतिक्रिया क्या है, हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। आपके मैसेजेस को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो बहनों, मैसेज भेजने के लिए नोट कीजिएगा हमारा मोबाइल नंबर। हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288। एक बार फिर से दोहरा देते हैं अपना मोबाइल नंबर, नोट कीजिएगा 9457078288। तो मैंने इस व्हाट्सएप नंबर पे आपके मैसेजेस का हमें इंतज़ार रहेगा। और अब चलते चलते आपसे यही कहेंगे बहनों कि बच्चों के स्कूल अब खुलने वाले हैं, जिनके बच्चे स्कूल में हैं वो बहनें अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि अगर स्कूल खुलने के एक दो दिन पहले ही आप तैयारी करती हैं तो जल्दबाजी में कोई ना कोई कमी रह जाती है और फिर उसके बाद टेंशन भी हो जाती है। तो छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने की तैयारी के लिए बच्चों की जो दिनचर्या है उसको भी आप परिवर्तन करने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल तो बच्चे भाई सोकर लेट उठ रहे होंगे, तो आज ही से उन्हें धीरे धीरे जल्दी से उठने, सामान्य रूप से उठने की शुरुआत कराइए। साथ ही उनका अगर होमवर्क अभी नहीं हुआ है कंप्लीट तो उसको कंप्लीट कराइए, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह चेक करें, और अगर कहीं स्टेशनरी में कोई कमी रह गई है जो आप पहले नहीं ले पाई थी तो उसको भी तैयार रखें बहनों। इसके साथ ही बहनों, स्क्रीन टाइम बच्चों का इस वक्त छुट्टियों के वक्त ज़्यादा होगा, बच्चे टेलीविज़न देख रहे होंगे, वीडियो गेम खेल रहे होंगे या फिर स्मार्टफोन चला रहे होंगे, तो धीरे धीरे ये भी उनका कम कराएं। और बहनों, स्टेशनरी की चेकलिस्ट कर लें, नई कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर और जो भी चीज़ हैं सभी की खरीदारी अगर नहीं की है तो कर लें। बैग उनका रेडी कर लें, स्कूल बैग, बैग अगर धुला नहीं है आपने तो उसकी सफाई कर लें, उस बैग को खाली कर लें, उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें बाहर रख दें, और जो भी समय सारणी है उसके अनुसार अपने बच्चे का बैग तैयार करें। मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म और जूते पहनकर चेक कर लें, यदि वो छोटे हो गए हैं या कोई दिक्कत उसमें है तो समय रहते उसका भी इंतज़ाम कर लें। मैंने बच्चों को छुट्टियों के बाद अचानक स्कूल शुरू होने पर ऊर्जा उनकी कम ना हो इसके लिए बच्चों को पौष्टिक और सेहतमंद नाश्ता और खाना आप खिलाएं, और साथ ही साथ पानी की बोतल जिसमें पानी ठंडा रह सके ऐसी बोतल की व्यवस्था भी बच्चे के लिए कर लें। वैसे तो आजकल के सभी पेरेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आपको हम याद दिला रहे हैं। लंच बॉक्स बच्चे का अगर नहीं है, पुराना हो चुका है, नया खरीदना है तो वो भी समय रहते खरीद लें बहनों। तो बिल्कुल, हम तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों का स्कूल खुलेगा तो बिल्कुल बेहतर तरीके से आप तैयारी करेंगे उनके स्कूल जाने की। और बहनों, बस आज का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अपनी साथी सुनीता नेगी को कार्यक्रम संपन्न करने की दे अनुमति। बहनों, नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे महिला जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। समय दोपहर के 1:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आज आपने सुने लता कुंजवाल के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। दोपहर के 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे।

0: happened across a very large area.
1: Taxi ka vistar bhi bahut bade kshetr mein.
2: He said the model will ensure that drivers receive a larger share of their earnings while passengers benefit from safe and affordable services.
3: The very first reason for the creation of Bharat Taxi is that there should be no exploitation of either our Sarthis or our customers. This is the foremost reason. Second, the Sarthi should be respected. They should not be dependent or at the mercy of an app for registration. Today, I say with pride that the 7 lakh Sarthis associated with Bharat Taxi are the owners and shareholders of Bharat Taxi.
1: Malik hai shareholder.
2: Vice President C.P. Radhakrishnan said the strength of any economy across the world lies in the contribution of its MSME sector. Addressing an event on MSME Day 2026 in New Delhi today, he said that in India, the MSME sector represents the courage and entrepreneurial spirit of the first generation entrepreneurs. The Vice President noted that the sector contributes nearly 50% of the country's total exports while consistently maintaining high quality standards. Mr. Radhakrishnan added that the MSME sector has become the strongest pillar in India's journey of becoming a Viksit Bharat by 2047.
4: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. This is not a word just for feel happy. This is the reality. That is what we understand from the great contribution of the MSME. Yes, MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
2: The Vice President also urged the entrepreneurs to adopt the modern technology to further enhance the productivity, production and quality.
4: But when the computer gets introduced, the software becomes the strongest area of India. We produce more jobs through the computer technology than what it was previously. Like that, AI is also modern technology coming up. We have to adopt it. We have to use all the modern technology for uplifting our productivity, production, quality. We cannot keep away from the modern technological developments.
2: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passed away in Chennai this morning following a severe cardiac arrest. He was 73. He was rushed to a private hospital after complaining of chest pain but could not be revived. A celebrated filmmaker, Bhagyaraj was also known for his engaging screenplays and witty dialogues that earned him a unique place in Tamil cinema. He directed several blockbuster Tamil films and the popular Hindi film Aakhri Rasta. He directed over 25 films and acted in around 75 movies. His acclaimed works include Morna Geetangal, Andha Sat Natakal and Munnadade Mudrichu. He began his career as an assistant director in 16 Vaithinayal. Chief Minister C. Joseph Vijay, DMK Chief and former Chief Minister M.K. Stalin were among those who paid floral tributes to the departed actor. The Tamil Nadu government has announced a state funeral in Chennai tomorrow. The Indian Navy's sail training ship INS Sudarshini arrived at the port of Baltimore in Maryland, USA yesterday as part of the landmark Transoceanic Expedition Lokayan 26. During its stay, the ship will undertake maritime engagement and community outreach activities ahead of the SAIL 250 Maryland celebrations commemorating the 250th anniversary of the United States. Counterintelligence Kashmir, CIK, carried out raids at several locations across the valley today as part of an investigation under the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. Officials said the searches were conducted at five locations across four districts, including Srinagar, Ganderbal, Kupwada and Anantnag. The raids are linked to an investigation into a case registered in 2023 at the Joint Interrogation Center of the Counter-Intelligence Kashmir Police Station. Officials said The searches were still underway when the latest reports came in. The death toll in the Taratala building collapse in Kolkata has risen to 17. Relief and rescue operations are underway with the Army, NDRF, Railways, Civil Defence, SDRF and other agencies working together at the site. The injured are undergoing treatment at SSKM Hospital in Kolkata. U.S. Vice President J.D. Vance has warned Iran that any future aggression would be met with force, hours after the United States carried out military strikes on Iranian targets. In a post on X, Vance said Iran had signed a ceasefire agreement and that the United States had honored it. He added that any disputes over the agreement should be resolved through dialogue, but warned that violence would receive a military response. The U.S. Central Command, CENTCOM, said American forces targeted Iranian missile and drone storage sites, along with coastal radar installations. It said the strikes were carried out in response to what it described as an Iranian drone attack on a commercial cargo vessel traveling through the Strait of Hormuz. The Democratic Republic of the Congo has reported more than 1,200 confirmed cases of Ebola since the outbreak was declared in mid-May. According to the latest figures from the country's public health authorities, there have been 1,203 confirmed cases, including 321 deaths. So far, 148 patients have recovered, while 419 remain in isolation or are receiving hospital treatment. Health officials have also identified 265 suspected cases, including 77 deaths. World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said contact tracing is reaching more people and that increasing numbers of patients are recovering and returning home. However, he warned that the outbreak is far from over. Back home, the IMD has said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of North Arabian Sea, Gujarat, Madhya Pradesh, remaining parts of Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and some parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand during next 3 to 4 days. The Met Department has predicted heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. The weather agency also forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and in some parts of northeast India today. On to sports. In FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India will now face England tomorrow. In the US Open Badminton, India's Devika Sehwag and Ronak Chauhan have reached the semifinals in Fullerton, California. Devika caused a major upset by defeating third seed Riko Gunji of Japan in the straight games, winning 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. And in football, Egypt have reached the knockout stage of the FIFA World Cup for the first time after a 1-1 draw with Iran in the final Group G match. Iran's Ramin Rezia was named player of the match. Egypt finished the group stage unbeaten and qualified as the runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit. Described Seychelles as a valued maritime neighbor and a key partner in India's Vision Mahasagar. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
7: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
5: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
8: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
9: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
5: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
1: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए।

0: अच्छा, इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए शुरू।

सफर फिल्म का एक गीत हमारे श्रोताओं ने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। श्रोताओं, इंदिवर का लिखा यह गीत था और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। कार्यक्रम एक ही गीतकार में आज हमारे गीतकार हैं इंदिवर साहब। मशहूर गीतकार इंदिवर साहब का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के झांसी में बरुआ सागर में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का साया इनके सर से उठ गया, लेकिन कठिन परिस्थितियाँ भी उनके हौसले को रोक नहीं पाई। श्रोताओं, बचपन से ही उन्हें कविताओं का ऐसा शौक था कि देश की आज़ादी की जंग में उन्होंने अपनी ही कलम को हथियार बना लिया और आज़ाद उपनाम से लेखन कार्य शुरू कर दिया था। देशभक्ति की कुछ ऐसी कविताएं इंदिवर साहब ने आज़ाद बनकर लिखी जिनकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और श्रोताओं, कविता और लेखन के प्रति उनका लगाव उन्हें आगे चलकर मुंबई ले आया। संघर्ष के कई वर्षों बाद उन्हें फिल्म डबल फेस में गीत लिखने का अवसर मिला, लेकिन कुछ खास सफलता उनके हाथ नहीं लगी। उसके बाद उन्होंने 1921

1951 में मल्हार फिल्म के गीत लिखे, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो गीत आज भी इतने सुपरहिट हैं कि हर किसी के दिल में, हर किसी की जुबान पर आ ही जाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं मल्हार फिल्म का ही ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, साल 1951 में आई फिल्म मल्हार के इस गीत ने बॉलीवुड में धूम मचा दी और उसके बाद इंदिवर साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और पायदान दर पायदान बुलंदियां छूते चले गए। कार्यक्रम में वक्त है जरूरी संदेश का, उसके बाद आपसे फिर मिलेंगे गीतकार इंदिवर साहब से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashvaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
0: एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम एक ही गीतकार में। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमारे गीतकार हैं इंदिवर साहब। श्रोताओं, इंदिवर साहब को मुंबई में अपनी पहचान बनाने में लगभग एक दशक तक कठिन संघर्ष करना पड़ा। 1963 में बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि की सफलता के बाद इंदिवर की शोहरत और ज़्यादा बुलंदियों पर पहुँच गई। निर्माता निर्देशक मनोज कुमार के वो काफ़ी निकट आ गए। मनोज कुमार के कहने पर ही उन्होंने फिल्म उपकार के लिए गीत लिखे और श्रोताओं, ये गीत उस वक्त के सुपरहिट गीतों में शुमार हो गए। इसके बाद उनका मनोज कुमार की ही फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत दुल्हन चली वो पहन चली और कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे जैसे सदाबहार गीत लिख कर आए और इंदिवर साहब का मुकाम आसमान छूने लगा। और श्रोताओं, इसके बाद तो उनके एक से बढ़कर एक गीत, चंदन साबदन, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, होठों से छू लो तुम, फूल तुम्हें भेजा है खत में, जैसे अनगिनत गीत आए जो सुपरहिट गीत बन गए। आइए आपको भी सुनवाते हैं फिल्म सरस्वती चंद्रा का ये गीत। मुकेश की आवाज़ में कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और इंदिवर का लिखा ये गीत है।

श्रोताओं, इंदिवर साहब के जीवन में सबसे खास मोड़ तब आया जब उनकी जोड़ी कल्याण जी और आनंद जी के साथ बनी और इस तिकड़ी ने मिलकर सरस्वती चंद्र उपासना, पूर्व पश्चिम, जॉनी मेरा नाम जैसी अनेकों फिल्मों में एक से बढ़कर एक गीत दिए।

जॉनी मेरा नाम, इस फिल्म का एक गीत आपने सुना श्रोताओं, किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज़ में। संगीत कल्याण जी आनंद जी का था और गीत लिखा था इंदिवर साहब ने। श्रोताओं, इंदिवर साहब ने अपने 4 दशक के लंबे करियर में 300 से ज़्यादा फिल्मों में 1000 से ज़्यादा गीत लिखे। उनके काम को कई बार सराहना मिली और उन्हें कई फिल्मों के लिए फिल्म फेयर के कई नामांकन भी मिले, लेकिन साल 1976 में उनके एक बेहद दर्द भरे गीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला, जिस फिल्म का नाम था अमानुष। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत अवार्ड विनिंग गीत। आवाज़ किशोर कुमार की है, संगीत श्यामलाल मित्रा का और गीत लिखा है इंदिवर ने।

श्रोताओं, इंदीवर साहब शुद्ध और दार्शनिक हिंदी वाले गीत लिखने के लिए जाने जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने खुद को ढाला और नाजिया हसन के सुपरहिट अंग्रेजी हिंदी पॉप ट्रैक जैसे आप जैसा कोई और बूम बूम के बोल भी लिखे। और श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है अंतिम गीत का, और ये गीत हमने लिया है फिल्म क्रिमिनल से। कुमार सानू की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत शब्द रचना है इंदीवर साहब की, और संगीत MM करीम का है।

0: क्रिमिनल फिल्म का एक गीत आपने सुना श्रोताओं, कुमार सानू की आवाज़ में। शब्द रचना इंदीवर साहब की थी और एमएम करीम का संगीत। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में एक ही गीतकार में बस इतना ही। इंदीवर जी ने अपने शब्दों से प्यार को एहसास दिया, दर्द को आवाज़ दी और ज़िंदगी को एक नई सोच दी। यही वजह है कि उनके लिखे गीत समय की सीमाओं से परे आज भी उतने ही ताज़ा और दिल के करीब लगते हैं। उम्मीद है इंदीवर साहब के गीतों का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा श्रोताओं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और महान कलाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी नेहा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: Darling, every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever.

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम में एक ही गीतकार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजे हैं श्रोताओं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। संध्या 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं राजवीर। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आधारित होता है जनहित में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी पर। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, या कहें कि DBT के बारे में। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। श्रोताओं, क्या आप भी अपने करियर को एक नई उड़ान देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बिना कोई मोटी रकम दिए कोई स्किल आप सीख सकें जिसके तुरंत बाद कोई रोजगार भी मिल जाए? तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए ही है। और जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, तो वो भी आप ही के लिए है। इस योजना का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है कौशल भारत कुशल भारत, यानी देश के युवाओं को हुनरमंद बनकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि जब हुनर होगा तभी कदर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस योजना में ऐसा क्या खास है, तो सुनिए, इस योजना के तहत आपको कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, हेल्थ केयर, टूरिज्म, रिटेल और फैशन जैसे 40 से भी ज़्यादा कोर्सेज उपलब्ध हैं। और सबसे मज़ेदार बात इस योजना की क्या है पता है? ये पूरी ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त है। जी हाँ, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। और आगे सुनिए, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको सरकार की ओर से एक वैलिड सर्टिफिकेट मिलता है जो कि पूरे देश में मान्य होता है। और ये आपकी जो है नौकरी ढूंढने में भी और आपको प्लेसमेंट करने में भी जो है पूरी मदद करता है। और अगर आप खुद का छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो आपको आसानी से लोन मिलने का रास्ता भी साफ हो जाता है। तो मेरे युवा साथियों, अगर आपकी आयु 15 से 45 साल के बीच है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं या किसी भी कारण से पढ़ाई बीच में छूट गई हो,

तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये योजना सिर्फ आपके लिए ही है। तो फिर देर मत कीजिए, आज ही अपने मोबाइल पर टाइप कीजिए PMKVYOFFICIAL.org और अपने नज़दीकी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की जानकारी लीजिए। वहाँ पहुँचिए और अपनी रुचि के अनुसार कोर्स चुनिए, स्किल सीखिए और आत्मनिर्भर बनिए। चलिए अब बात करते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के बारे में। श्रोताओं, पुराने ज़माने का एक किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता था तो ज़मीन पर बैठे गरीब आदमी तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते थे, बाकी के 85 पैसे गरीब आदमी यानी लाभार्थी तक आते आते गायब हो जाया करते थे। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, तकनीक बदल चुकी है और बदल चुका है हमारा देश। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी डिजिटल क्रांति की जिसने बिचौलियों और दलालों का खेल हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, और वो है DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसका सीधा सा अर्थ है आपका पैसा सीधे आपके खाते में, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के और बिना किसी कटौती के। साथियों, सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, स्कूल कॉलेज के बच्चों की छात्रवृत्ति हो, गैस सिलेंडर की सब्सिडी हो, हमारी माताओं बहनों की पेंशन हो, या फिर सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता, DBT के जरिए पूरा का पूरा पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। DBT का सबसे बड़ा फायदा यही है कि बीच से भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी पूरी तरह से खत्म, सरकार का पैसा सीधे सही और हकदार व्यक्ति तक तुरंत पहुंचता है। तो श्रोताओं, अगर आप भी सरकार की किसी कल्याणकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो बस 2 छोटे से लेकिन बेहद ज़रूरी काम अवश्य कर लें। पहला तो ये कि अपने बैंक खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक ज़रूर करवाएं, और दूसरा ये कि अपने बैंक खाते में वही मोबाइल नंबर चालू रखें जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। तो साथियों, अब अपना हक पाने के लिए ना तो किसी के चक्कर काटने की ज़रूरत है और ना ही किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत है। ये है डिजिटल इंडिया की वो ताकत जो गरीबों को उनका हक सम्मान के साथ दिला रही है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और अब आप अपना मनोरंजन कीजिए इस म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय संध्या के 5:10 हो रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
1: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए, हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
2: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती हैं। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है, जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है, और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वाशिंग होती है, वाशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया, दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया, या वो खाद्य पदार्थ के साथ मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते, वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है, बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक SLRM सेंटर है। क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है, जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा SLRM सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती है, उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है, ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहां जमा करिए और यहां पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
2: यस।
1: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में, या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी आप?
2: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक IC एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है। तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको यह समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर है, आप प्लास्टिक को कहां बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 30-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए मैं इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सके, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता
1: है। ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
2: जी बिल्कुल,
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
2: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें। तो इसके लिए हम लोगों ने इन साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ भेदभाव हो, ऐसी स्थिति ना बने। तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
2: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जांपल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूं और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊं, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूं? तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचरे का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
2: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में। तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही है, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
2: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
2: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सनी जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं?
2: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए?
2: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27-28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहां पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहां तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा, कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीजों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीजों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला?
3: समाज के किस तबके को मिला?
2: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको यह समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, एक किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, एक किलो लोहा और एक किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। एक किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया। और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है, इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज करें। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना, आप प्लास्टिक का यूज किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
3: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
2: नहीं,
3: क्या है,
2: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीजों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजेबल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
3: जैविक है,
2: जैविक है वो, ऑर्गेनिक है वो।
3: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती है कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
2: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है, तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ आइटम है, तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है, उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उस ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
2: जी,
3: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए, कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
3: कैफे पड़ा,
2: बिल्कुल असर
3: वृद्धि हुई है,
2: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं, तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए, ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर इस पर अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
3: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो, तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
2: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
3: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब में?
2: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा, तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी, तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था, ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा, ठीक है। तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा, और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था, उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे, तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना है और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20 से 22 रुपए आ जा रही है, अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20 से 22 रुपए वहां से बच गए। है, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया, तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
3: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है लाभ का, अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है।
2: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है। नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
3: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, हाँ, उनके बल पे ये
2: बिल्कुल चल रहा है,
3: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
2: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा 21
3: लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
2: बिल्कुल जानकारी।
3: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
2: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
3: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
2: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइक्लिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बॉटल में पानी पिए और वो बॉटल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है। तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं। कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी इनिशिएटिव
3: टॉकीज में जाकर फिल्म देख सकें,
2: इस तरह की योजना कैसे बच्चों का, सपोज दैट कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाएं फिर प्रेस करते जाएं, डालते जाएं, वो एक भर के इतना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह के चीजों पे भी।
3: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
2: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
3: उसके रैपर
2: इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कुरियर कर दिया।
3: मैंने एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचड़ा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने एक कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
2: # गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
3: जापान कोरिया यहां से भी
2: सभी जगह
3: प्रशंसा आई थी,
2: प्रशंसा आई थी। अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं, और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
3: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा।
4: संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: कुछ धुने दिल की धड़कनों में बस जाती हैं,
1: कुछ आवाजें उम्र भर याद बनकर रह जाती हैं।
0: गीत तो बस सुरों का नाम ही नहीं होते,
1: ये तो वो एहसास है जो हर रिश्ते को और भी खास बना जाते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? स्टूडियो में हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो पार्टनर मरियम जैदी और
0: फ्रेंड्स मरियम के साथ। स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर, और हम मिलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों कितनी सच्ची बात कही है ना मरियम ने, कि गीत वो एहसास है जो हर रिश्ते को और भी खास बना जाते हैं। सच में एक अच्छा गीत सिर्फ सुनाई ही नहीं देता बल्कि महसूस भी होता है। दोस्तों कभी चेहरे पर मुस्कान ले आता है तो कभी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर देता है।
1: तो चलो सिमरन, इसी बात पर शुरू की महफिल से आज अपने दोस्तों की इस शाम को ना सजा देते हैं, क्योंकि आज है सैटरडे और दोस्तों आज की शाम है गीतों के नाम। वो कैसे बताओ सिमरन?
0: वो ऐसे कि आपको भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर मैसेज अपना फरमाइशी गीत सुनने के लिए, और इसी के साथ हम कर देंगे वो गीत आपके नाम।
1: तो चलिए दोस्तों अपने दिल की धड़कनों को संगीत की लय से जोड़ते हैं और शुरू करते हैं सेगमेंट गीत आपके नाम।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
4: हो जाओगे एहसास कर लोटपोट,
3: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
5: और डोज में क्या है?
4: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।

0: प्रणाम ससुर जी।
1: अरे प्रणाम प्रणाम। अरे दामाद जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया बढ़िया ससुर जी, आप बताइए क्या आप कैसे हैं।
1: अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये क्या दामाद जी हर बार इसी शर्ट में आ जाते हो? कोई और शर्ट नहीं है क्या आपके पास?
0: अरे ससुर जी, आपकी भी तो चार बेटियां हैं, हर बार आप इसी को मेरे साथ भेज देते हैं। मैंने कभी कुछ बोला?
2: जी हाँ, मजा आ गया।
0: दोस्तों आज आपके लिए हाजिर है कुछ खास है आज, और आज ये खास ये है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस यानी MSME।
1: यानी छोटे कदम और बड़े सपने।
0: दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर के पास की छोटी सी सिलाई की दुकान, मोहल्ले की बेकरी या फिर हाथ से बनी खूबसूरत शिल्प,
1: और या फिर गांव की महिलाओं के हाथों से बने पापड़ और अचार, ये सब छोटे छोटे बिजनेस नहीं है बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है।
0: आज हमारे ये MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये वो उद्योग हैं जो कम पूंजी यानी कम पैसे से शुरू होकर लाखों लोगों को रोजगार देते हैं।
1: बिल्कुल सिमरन, और आज भारत में करोड़ों MSME ना केवल लोगों की आजीविका का आधार हैं बल्कि देश के विकास की गति को भी बढ़ा रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक छोटी सी सिलाई मशीन से शुरू हुआ काम कुछ सालों में लोगों को रोजगार देने लगता है और उसके उत्पाद विदेशों तक पहुंच जाते हैं।
1: यही है छोटे सपनों की बड़ी उड़ान। आज का युग लोकल से ग्लोबल का है। अगर हमारे छोटे उद्योग क्वालिटी, मेहनत और नए विचारों के साथ आगे बढ़े तो वो दुनिया भर में अपनी पहचान बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो आइए फ्रेंड्स, आज इस MSME दिवस पर हम ये संकल्प लें कि स्थानीय उत्पादों को अपनाएं, छोटे उद्यमों का सम्मान करें और युवाओं को नौकरी खोजने के साथ साथ नौकरी देने वाला भी बनाने के लिए प्रेरित करें।
1: याद रखिएगा दोस्तों, हर बड़ा उद्योग कभी एक छोटा सपना था। जब सपनों के साथ मेहनत जुड़ जाती है तब सफलता खुद रास्ता बना लेती है।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों इसी प्रेरणा के साथ आप सभी उद्यमियों और हमारे प्यारे प्यारे साथियों को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन लेकिन दोस्तों देखो मरियम, आज हमारा सेगमेंट था गीत आपके नाम, तो हमें हमारे लिसनर्स के मैसेजेस भी आने स्टार्ट हो गए हैं, तो देखते हैं हमें हमारा पहला मैसेज कहाँ से मिला है। हमारा पहला मैसेज है, उन्होंने लिखा है कि प्यार भरा आदाब आपको दिल से, तो आपको भी हमारा बहुत बहुत आदाब। तो ये हमें मैसेज मिला है जसपुर रोड दूलापुर जिला मुरादाबाद से, भेजने वाले हैं महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा, महबूब मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलशिफा परवीन।
1: और इसी के साथ सिमरन हमें एक और मैसेज मिला है जो हमें मिला है दरियापुर भाबली महाराष्ट्र से, और भेजने वाले हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले, शेरी वडनीर अकोला से, अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर।
0: बिल्कुल, साथ ही मरियम हमें अगला मैसेज भी आ चुका है जो कि भेजा है जलालाबाद वेस्ट से, और भेजने वाले हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। तो चलिए दोस्तों इनकी फरमाइश पर सुनते हैं हमारे सेगमेंट गीत आपके नाम का अगला प्यारा सा गीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
4: हो जाओगे आशाज कर लोट को,
3: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
5: और डोज में क्या है?
4: डोज में है मज़ा।

0: जी हाँ, मजा आ गया।
1: रीता सुन, जरा तुझे आज एक बात बताऊं।
2: हाँ हाँ बताना गीता, क्या बात है?
1: कुछ दिन पहले मेरी सास ने बोला कि सब्जी काट दे, तो मैंने बोला कि मम्मी जी मैंने सब्जी काट दी है। तो उन्होंने गुस्से में मुझसे बोला कि हमारे यहाँ काट दी नहीं बोला जाता, सुधार दी बोलते हैं।
2: अच्छा, तो फिर?
1: तो फिर क्या, आज सास को कुत्ते ने काट लिया। तो पतिदेव ने पूछा क्या हुआ मम्मी जी को, तो मैंने भी बोल दिया कि कुत्ते ने मम्मी को सुधार दिया। तब से सबका मुंह फूला है, समझ नहीं आ रहा कहाँ गलत बोला।
0: जी हाँ, मजा आ गया।
1: तो दोस्तों, अब आपके लिए हाजिर है हमारे रहस्य सीरीज सीजन 2 भूल भुलैया का एपिसोड नंबर 3, जिसका आलेख किया है आदिल सैफी ने और प्रस्तुति की है शोभित शर्मा जी ने।
3: हाय, मेरा नाम आदिल है, आदिल सैफी, और आप सभी का स्वागत है हमारे रहस्य सीरीज के सीजन 2 में। इस कहानी का नाम है भूल भुलैया, और ये है रहस्य सीरीज की तीसरी कड़ी यानी एपिसोड नंबर 3।

और आइए अब जान लेते हैं अब तक की कहानी। कहानी शुरू होती है राजस्थान के पोखरान में स्थित हवेली में। कुंवर राजवर्धन के अमेरिका से लौटने की खुशी में एक बड़े जश्न की तैयारी चल रही होती है, जो कि 12 अगस्त सन 2008 को ऑर्गेनाइज की गई थी। लेकिन राजा गोवर्धन सिंह एक अनजाने खौफ के साए में जी रहे थे। उन्हें लगातार ऐसा महसूस हो रहा होता है कि कोई छुपकर उन पर नजर रखे जा रहा है। 11 अगस्त की रात उनके हवेली के खाली कोनों से किसी के सिसकने और खुसफुसाने की और चीजों के घसीटने की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जब राजा साहब उन आवाजों का पीछा करते हैं, तब उन्हें अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास होता है। राजा साहब पलटते हैं और देखते ही देखते वो परछाई हवा में कहीं गायब हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद राजा साहब के चीखने की सबको आवाज आती है। सभी लोग आवाज का पीछा करते हुए वहां जाते हैं, तब वो नोटिस करते हैं कि राजा साहब एक अनजान कमरे में बेहोश पड़े हैं। सभी के मन में सवाल थे कि आखिर राजा साहब के साथ हुआ क्या। फिर उसके बाद सभी मुलाजिम मिलकर राजा साहब को उनके रूम में लेकर जाते हैं और पानी के छींटे उनके चेहरे पर छिड़कते हैं। तब थोड़ी देर बाद उनको होश आता है। तब वहां मौजूद बाकी लोगों को वो साए के बारे में बताते हैं। सभी लोग सुनकर हैरान भी होते हैं, पर अगले दिन हवेली में जश्न होता है और सभी लोग इस बात से और चिंतित दिखते हैं। अब अगले दिन यानी 12 अगस्त सन 2008 वो रात आ चुकी थी जिसका पोखरान को इंतजार था। अमेरिका से राजा साहब का बेटा राजवर्धन सिंह लौट रहा था। पूरी हवेली रोशनी से नहाई हुई थी। राजा गोवर्धन सिंह ने अपने बेटे को गले लगाया और आंखें नम हो गई, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वो अनजाना खौफ जिंदा था। पार्टी में देश के कई बड़े बड़े राजनेता, इंडस्ट्रियलिस्ट और शाही मेहमान मौजूद थे। अब रात के करीब 10 बजे ठीक उसी वक्त जश्न के बीचोंबीच अचानक पूरी हवेली की बिजली कट हो जाती है। हवेली में मौजूद जनरेटर भी काम नहीं करते। अंधेरे में 5 मिनट तक सिर्फ लोगों की डरी हुई आवाजें गूंजती है। जब पहरेदार मशाले जलाकर लाते हैं तो हवेली का नजारा देखकर सबकी रूह कांप जाती है। राजा साहब का बेटा कुंवर राजवर्धन सिंह हवेली के बीचों बीच से गायब हो जाता है। और सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि पार्टी में आए 4 सबसे बड़े और अमीर वीआईपी मेहमान भी रहस्यमय तरीके से वहां से गायब हो चुके थे। उनका कोई नामो निशान नहीं था। कुछ ही घंटों में पूरा पोखरान छावनी में तब्दील हो जाता है। पुलिस की दर्जनों गाड़ियां हवेली को घेर लेती हैं। पुलिस भी सवालों में घिर चुकी थी क्योंकि वहां पर पहले से ही पुलिस की टीम तैनात थी और इतने भारी पहरे के बीच 5 लोग हवेली के अंदर से कहां गायब हो सकते हैं। ना तो कोई गाड़ी बाहर गई, ना कोई खून का निशान मिला। पुलिस के लिए सब कुछ एक पहेली बनकर रह गया था। अब आपके मन में भी इससे जुड़े हुए काफी सवाल आ रहे होंगे कि आखिर उस हवेली में हुआ क्या और राजवर्धन सिंह आखिर कहां गायब हो गया। जानेंगे इन्हीं सभी सवालों के जवाब रहस्य सीरीज के आगे आने वाली एपिसोड्स में। सो हमारे युवानी प्रोग्राम को सुनना।

0: प्रवीण शाह, राजेंद्र जी शाह। और इसी के साथ हमें अगला मैसेज मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, और भेजने वाले हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।
1: और साथ ही हमें अगला मैसेज मिला है मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से, भेजने वाले हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, सितारा बेगम, मोहम्मद इकबाल फरीदी, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा रानी और हीना कौसर। तो चलिए दोस्तों, इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों ये तो था हमारा सेगमेंट गीत आपके नाम, और जिन समय की कमी के कारण जिन साथियों के नाम हम अपने प्रोग्राम में नहीं ले पाए, हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि अगले सैटरडे आपके नाम ज़रूर शामिल किए जाएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों आपको हमारे प्रोग्राम

0: कैसे लग रहे हैं आप हमें जरूर बताइएगा अपने खत के जरिए। और आप जानते ही हैं कि खत भेजने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस नोट करना है हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवा युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 2467-63 पर। और साथ ही आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर।
1: हमें आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले कहानी, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी साथी मरियम जैदी
0: और सिमरन कौर को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 6 बज रहे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फॉर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,770

0: उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषिगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया हिमांशु रंजन की राम राम। और सुनाइए किसान भाइयों, कैसे हाल चाल हैं आपके? भैया देखो, हाल चाल तो आपके ठीक होंगे, और भैया थारी खेती किसानी भी अच्छी चल रही होगी। किसान भाइयों देखो, अगर हम भैया गर्मी की बात करें तो भैया इस समय गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है। तेज धूप और भैया ऊंचे तापमान के कारण फसलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए किसान भाइयों को समय पर सिंचाई करनी चाहिए, खेत में नमी बनाए रखनी चाहिए और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार फसल का प्रबंधन करना चाहिए। साथ ही भैया इस तेज गर्मी से खुद का भी हमें बचाव रखना है। और भैया जिन किसान बहन भाइयों ने पशुपालक हैं, यानी भैया पशुपालन कर रखा है, डेयरी व्यवसाय कर रखा है, भैया वो भी अपने पशु को गर्मी से बचा के रखें। और अपने पशु को भैया दिन में कम से कम 2 या 3 बार भैया अवश्य नहलाएं, पशुशाला की साफ सफाई रखें, पशु को पीने के लिए स्वच्छ और ताज़ा पानी ही पिलाएं, और भैया समय समय पर अपने पशु का टीकाकरण अवश्य कराएं। और भैया जहाँ तक टीकाकरण की बात है, तो भैया बदलते मौसम में, क्योंकि भैया देखो आने वाला समय भैया बरसात का है, तो हमें बदलते मौसम में अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराना है। और भैया टीकाकरण हमें जो कुशल पशु चिकित्सक है उसकी देखरेख में, उसकी निगरानी में ही कराना है। और इस समय की बात करें तो भैया पशु को गलघोटू तथा BQ का टीका अवश्य लगवाएं, और पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवाई हमें भैया इस समय दे देनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने पशु का स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। साथ ही भैया हमें अपना भी रखना, अपने भैया फसलों का भी रखना है। और भैया देखो किसान भाई जान नहीं है कि भैया इस समय खरीफ का है, खरीफ सीजन हमारा भैया शुरू हो गया है, और इस समय हमारे किसान भाई फसलों की बुआई के लिए खेत भैया तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि भैया देखो धान की नर्सरी तो हमारे किसान भाइयों ने डाल दी होगी, लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं भैया जिनकी किसान भाई बुआई की तैयारी में लगे होंगे, दलहनी फसलें होंगी। और अगर भैया हम फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमारा बीज अच्छा होना चाहिए, साथ ही अगर भैया बीज को उपचारित करके अगर बोया जाएगा तो भैया बहुत अच्छा रहेगा। जिस प्रकार भैया एक मजबूत इमारत की नींव अच्छी होने पर वह लंबे समय तक भैया टिकी रहती है, उसी प्रकार अच्छी फसल के लिए स्वस्थ एवं गुणवत्ता युक्त बीज होना आवश्यक है। भाइयों हम बात कर रहे हैं भैया बीज शोधन की, क्योंकि भैया देखो बीज शोधन करना बहुत जरूरी है। और भैया बीज शोधन की बात करें तो ये ऐसी प्रक्रिया है, इसमें बीजों को रासायनिक, जैविक या प्राकृतिक पदार्थों से उपचारित किया जाता है, ताकि वे बीज एवं मृदा जनित रोग, कीटों तथा हानिकारक सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रह सकें। क्योंकि भैया कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बीज से पनपती हैं, और भैया कुछ बीमारी ऐसी हैं जो भैया मृदा जनित बीमारियां हैं। तो जब भैया बीज जनित बीमारियों की बात आती है तो भैया हमें बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए, और भैया यह सुरक्षित भी माना जाता है। यह कम लागत वाली, सरल तथा अत्यंत प्रभावी कृषि तकनीक है जो किसानों को अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त करने में भैया मदद करती है। किसान भाइयों बीज शोधन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि भैया यह बीज को प्रारंभिक अवस्था में ही विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। जैविक बीज शोधन से मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि भैया देखो जैविक तरीके से चाहे हम कोई सी भी चीज़ करें, चाहे भैया हम बीज का शोधन करें, चाहे भैया हम जैविक खेती करें, भैया लाभ तो मिलता ही, क्योंकि भैया सूक्ष्म जीवों की संख्या उसमें अधिक रहती है। टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिलता है भैया इससे। तो किसान भाइयों बीज शोधन एक सरल, सस्ती और प्रभावी कृषि तकनीक है जो स्वस्थ फसल उत्पादन की नींव मानी जाती है। तो हमारे प्रत्येक किसान भाइयों को बुआई से पहले बीजों का उचित शोधन अवश्य करना चाहिए। तो किसान भाइयों ये तो बात हुई बीज शोधन के महत्व पर। और भैया एक बात और हम आपसे करना चाह रहे हैं, वो है भैया बात DBT की, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसे भैया प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के नाम से जाना जाता है। DBT भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है भैया, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे जो पात्र लाभार्थी हैं, पात्र व्यक्ति हैं, उनके बैंक खातों तक भैया पहुंचाना है। इस व्यवस्था के माध्यम से सरकार द्वारा दी गई जो भैया विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता है, सब्सिडी है, छात्रवृत्ति है, पेंशन है, कृषि सहायता है, मजदूरी तथा अन्य आर्थिक लाभ हैं भैया, सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। इससे लाभ वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज, सुरक्षित और प्रभावी बनती है। किसान भाइयों, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जिसे भैया DBT कहते हैं, इस प्रणाली की शुरुआत मुख्य जो उद्देश्य था भैया वो ये था कि सरकारी योजनाओं में होने वाली अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, बिचौलियों की भूमिका तथा भैया फर्जी लाभार्थियों की जो समस्या है उसको समाप्त करना था। पहले कई बार भैया इस योजना का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्ति तक पहुंचने में भैया समय लगता था, या कई बार ऐसा होता था कि भाई वो नहीं पहुंच पाता था, लेकिन जब से भैया DBT यानी कि ऑनलाइन प्रणाली आई है उससे भैया इसे लागू होने के बाद इस समस्या में काफ़ी कमी आई है। DBT प्रणाली का आधार जनधन खाते, आधार संख्या और मोबाइल नंबर की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इसके माध्यम से लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित होती है और धनराशि सीधे उसके बैंक खाते में भेज दी जाती है। इससे भुगतान प्रक्रिया सरल और सुरक्षित हो जाती है तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। लाभार्थी अपने मोबाइल पर भुगतान की सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि भैया उनके खाते में राशि जमा हो गई है या भैया नहीं। और साथ ही भैया DBT प्रणाली के अंतर्गत अनेक सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। साथ ही भैया विद्यार्थियों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ भी इसी के माध्यम से मिलता है। LPG गैस सब्सिडी है, मनरेगा मजदूरी है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है और भैया अन्य बहुत सारी ऐसी जो योजनाएं हैं, इनकी राशि भैया DBT के माध्यम से ही भैया सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई जाती है। और इससे लाभ वितरण की प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय है और भैया समयबद्ध बनी है। तो भैया कहा जा सकता है कि ये जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है, जिसे भैया हम DBT कहते हैं, भारत में सुशासन और डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस प्रणाली ने सरकारी योजनाओं के लाभ वितरण को सरल, पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाया है। तो भैया आप लोग समझ गए होंगे कि भैया DBT क्या है। तो हमारे किसान भाई भैया जानकारी से भैया लाभ कमा रहे होंगे और भैया हम अपने किसान भाइयों को बताना चाह रहे हैं कि भैया आज दिन है शनिवार का और हमारे किसान भाई जानते ही हैं कि भैया आज के दिन हम किसान भाइयों के लिए लेकर आते हैं लोकगीतों व रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। तो भैया हमारे किसान भाई हमारे स्टूडियो में सीधे फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करने के लिए भैया हमारा नंबर है, तो पहला मोबाइल नंबर है हमारा 9457-07-82-88 और भैया एक हमारा लैंडलाइन नंबर है वो है 0-13-41-230-105। तो जब तक भैया हमारे किसान भाई हमारे स्टूडियो में फ़ोन करें तब तक हम भी कर लेते हैं कुछ जरूरी काम। भैया सुन लेते हैं कुछ ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
4: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
3: यूरिया और DAP का संतुलित उपयोग,
4: खुशहाली का नया प्रयोग।
5: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
0: तो अभी हमारे किसान भाइयों ने सुने कुछ ये जरूरी संदेश। और भैया कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और भैया हम किसान भाइयों को बता रहे थे कि हम किसान भाइयों के लिए लेकर आ गए हैं कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी।

0: स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के लोकगीतों वैराग्यों के फरमाइशी सजी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी में। और भैया इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भैया हिमांशु रंजन। तो भैया हमारे किसान भाई अब से लेके और 6:45 तक हमारे स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं और अपनी पसंद की कोई भी रागनी या लोकगीत सुन सकते हैं। इसके लिए भैया हमारे फ़ोन नंबर एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है भैया वो है 9457072888। भैया हमारा एक लैंडलाइन नंबर है वो है 01341230105। और भैया देखिए इधर हमने फ़ोन नंबर्स बताए, उधर देख लेते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो लोकमंजरी
1: हेलो लोक मंजरी
0: जी, नमस्कार जी, कौन
1: जी,
0: बोल रहे हैं?
1: हिमांशु रंजन जी को मेरी राम राम।
0: जी राम राम जी, आप कौन बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए अपना।
1: मैं ग्राम का धरोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ जी।
0: जी मदन गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी जी जी
0: कैसे हैं आप?
1: जी बात को मैं कहना चाहता हूँ
0: जी
1: कि मुझे कृषि जगत के कार्यक्रम बेहद पसंद है।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी
1: और
0: आपका।
1: जो है नए नए प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं और जो आप आजकल के ऊपर आपने जो नाटक प्रस्तुत किया वो एक बेहद सच्चाई थी और आपने प्रस्तुत की, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आपको हमारे नाटक पसंद आ रहे हैं, हमारे कृषि जगत के कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं। तो आपकी तरफ गर्मी कैसी हो रही है इस समय?
1: बहुत गर्मी है जी, ये जो है 42 डिग्री सेल्सियस है आज।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो गर्मी में अपना, अपनी फसलों का, सबका आपको बचाव रखना है।
1: जी कर रहे हैं जी, क्या करें बताओ, किसान
0: जी
1: का तो है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आज
1: जी
0: कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं आप?
1: मैं सुनवा जी वह रागिनी एक कुटुम 20 आदमी 8 बीघा कुल धरती।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 20 आदमी एक कुटुंब में, तो आप ये प्यारी सी रागनी सुनना चाह रहे हैं और आपने हमें कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत
1: मैं
0: धन्यवाद।
1: दो चार आदमियों के नाम
0: जी
1: लेना चाहूंगा
0: जी
1: जी।
0: जी बिल्कुल ले लीजिए।
1: आचार्य सत्यवीर सिंह जी चौहान हैं
0: जी
1: और जो है आसिफ चौधरी जी हैं,
0: जी
1: प्रकाश चंद जी हैं और राशिद अंसारी जी हैं
0: जी जी जी
1: और सेवाराम धीमान जी हैं,
0: जी बिल्कुल,
1: ये सब है।
0: चलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लेते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारी सी रागनी।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो लोक मंजरी
1: हाँ हेलो लोग मंजरी।
0: जी, नमस्कार जी। नाम बता दीजिए अपना, कौन बोल रहे हैं आप?
1: नमस्कार साहब, मेरा नाम जगदीश चंद खरगोनिया, हैदराबाद छोड़वाला जिला बिजनौर से बोल रहा हूँ।
0: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: ठीक है। मैं
0: जी, और बताइए आपका क्या काम करते हैं और खेती बाड़ी कैसी चल रही है आपकी?
1: बढ़िया चल रही।
0: जी, तो आप आज के कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं?
1: एक लोकगीत सुना दो, इसका नाम है नोटांडी का बिजना।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी पसंद पर ये प्यारा सा लोकगीत सुनते हैं। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
1: बस हो गया, कहना चाह रहे हैं।
0: चलिए चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया इसके लिए।

0: हेलो लोक मंजरी
1: हेलो लोक मंत्री सर।
0: जी, नमस्कार जी। कौन सा आप बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए अपना
1: नमस्कार जी सर।
0: जी।
1: मैं अमित धीमान बोल रहा हूँ सर, जैतपुर के पास कसौर गांव से।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: सर हम तो बढ़िया हैं सर, गर्मी बहुत है सर।
0: देखिए, बिल्कुल गर्मी सभी जगह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस गर्मी के मौसम में हमें अपना, अपने पशु का और अपनी फसलों का बचाव रखना है। तो आप अपनी फसल में जो है नमी बना के रख सकते हैं, और इस गर्मी के मौसम में आप अपने लिए क्या बचाव कर रहे हैं?
1: सर बार बार पानी
0: जी,
1: और सफेद कपड़े का, सूती कपड़े का प्रयोग करें
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: अंगोछा सिर पर रख कर ही बाहर निकलें सर, खेती
0: बिल्कुल
1: बाड़ी के
0: बिल्कुल।
1: काम।
0: और अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखिएगा
1: जी सर।
0: जी। तो आज के कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं आप?
1: सर एक रागनी सुना देना सर, महला में जा गिरी गेंद रूप तुलाना भैया।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: सर मेरे कुछ नाम है सर, मैं जो लेना चाहता
0: जी
1: हूँ।
0: जी ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए
1: एक है मदन गिरी जी गांव घरोना से,
0: जी
1: और एक आचार्य सत्यवीर सिंह
0: जी
1: राहु नंगली, और
0: जी
1: हरपाल धीमान ये चिड़ियापुर शास्त्री जी,
0: जी जी जी बिल्कुल
1: और पूरा आकाशवाणी परिवार और जितने भी सभी सुनने वालों को मेरी नमस्ते।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी साधुवाद, धन्यवाद। तो आइए आपकी पसंद पर सुन लेते हैं प्यारी सी रागनी।

0: किसान भाई अभी सुन रहे हैं अपना मनपसंद लोकगीत और रागनियों का सजीव फरमाइसी फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। और भैया जो हमारे किसान भाई हमें फ़ोन करना चाहते हैं, अपनी पसंद की कोई भी रागनी या लोकगीत सुनना चाहते हैं, वो अब से लेकर 6:45 तक हमारे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। और हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 94-57-07-82-88, ये है मोबाइल नंबर। और हमारा है भैया एक लैंडलाइन नंबर, वो है 013-41-230-105। और अब देख लेते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो लोक मंजरी।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए अपना।
1: जी, मैं जिला मुजफ्फरनगर गांव खेड़ी दखान, लड्डन सिंह के गांव खेड़ी दखान से बोल रहा जी, इलियास अंसारी।
0: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है जी, शुक्र है मालिक का, आपकी आकाशवाणी में सब ठीक है?
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया है यहाँ पर भी सब। और बताइए कैसे चल रहा है आपका काम धाम, खेती बाड़ी कैसी चल रही है?
1: बस जी, खेती बाड़ी तो हमारे है नहीं।
0: जी जी जी,
1: ये अपना कपड़ा उपड़ा बेचने का काम है, नाकान बीनने का काम है मेरा, बस अपना करो जहाँ गुजर।
0: जी जी, बहुत बढ़िया काम है जी। और आप हमारा कार्यक्रम नियमित तौर पर सुनते रहते हैं?
1: हाँ जी, बड़े दिल से सुनते हैं जी आपका कार्यक्रम। जी,
0: कैसा लगता है आपको हमारा कार्यक्रम?
1: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
0: चलिए जी, धन्यवाद। तो आज कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं आप?
1: आज नैनपाल की आवाज में सुनना जी, नैनपाल बसेड़ा है
0: जी।
1: हाँ, इनकी आवाज में रागनी सुननी है
0: जी। जी,
1: चांद ने मांग ली रोशनी।
0: अच्छा, सूरज ने ली मांग रोशनी।
1: सूरज, हाँ सूरज ने मांग ली रोशनी।
0: जी जी,
1: ये बहुत अच्छी रागनी है ये।
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद पर हम आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: जी। और हमारे साथी हैं जी।
0: जी जी, बताइए।
1: ये इकबाल अंसारी है, शकील अंसारी है, सईद अंसारी है, जुल्फकार अंसारी है, नसीम अंसारी है, मतीन अंसारी है, और हमारी रईसा बेगम है जी। ये तो बहुत
0: जी
1: दिल से आपके प्रोग्राम सुनती है।
0: चलिए जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं।
1: ये गोयले की है, गोयला गांव है, गोयले के अंदर ये बहुत शौक से रागनी सुनती है जी।
0: चलिए चलिए, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारी सी रागनी। आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो लोक मंजरी।
1: हेलो लोक मंजरी भाषा नमस्ते
0: नमस्कार जी, नाम बता दीजिए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी मैं उत्तराखंड सेनिखाल सेनगांव फील्ड से प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ जी।
0: जी प्रकाश चंद्र जी, कैसे हैं आप और आपकी तरफ का मौसम कैसा है ये बताइए पहले।
1: साहब इधर मौसम फिर गर्मी हो गई शुरू और बारिश बंद हो गई।
0: अच्छा
1: है, बहुत ही गर्मी शुरू हो गई यहाँ तो अब।
0: जी जी बिल्कुल। तो आप अपनी जो भी फसलें हैं, जो भी आपकी सब्जियों वाली फसल हैं, बेल की फसल हैं, उसमें आप पर्याप्त सिंचाई करके रखिएगा, नमी बना के रखिएगा।
1: हाँ जी हाँ, आजकल नमी बना के रखे नहीं तो सूख जा रहे हो और बहुत पानी डालना पड़ रहा है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है।
0: जी, तो आज कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं आप?
1: भाषा और क्या कहते हैं, ये लोकगीत है, हरियाणी लोकगीत, चूड़ी लेके आया मनियारा, सुरेश वाड़कर का है ये।
0: चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत, और आपने हमें कॉल किया इसके लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।

0: रे मत दिखा तू छोरी, सोता ना हो वो दोबारा।
1: तो अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे लोकगीतों रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। और भैया जिन किसान बहन भाइयों के अभी फ़ोन नहीं लगे हैं तो भैया वो हमें अगले कार्यक्रम में हमें सीधे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। और भैया नंबर हमारे वही हैं 94-57-07-82-88 और एक हमारा है लैंडलाइन नंबर, वो है 013-41-230-105। और भैया अब घड़ी भी भैया और बातचीत की इजाज़त नहीं दे रही है, तो किसान भाइयों अब अगले कार्यक्रम तक अपने भैया हिमांशु रंजन को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

हैं उनमें भी कई स्थानों पर समानता देखी जा सकती है। संपूर्ण विश्व में और देश में विचारों की जो नई बयार बह रही थी उससे तार सप्तक के कवि भली भांति परिचित थे। कहा जा सकता है कि कवि समय के साथ चल रहा था। यह तो स्वीकार्य है कि रचनाकार अपने समय की राजनीतिक हलचलों से स्वयं को काट कर नहीं रख सकता, उसका प्रभाव तो किसी न किसी रूप में पड़ता ही है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि एक घटना विशेष का तुरंत प्रभाव

अनेक मोड़ों से गुजरी है, अनेक पड़ाव पर ठहरी है और इस मध्य उसने नए नए रूप ग्रहण किए हैं तथा उसने निरंतर अपना विकास किया। इस अवधि में वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्थिति पर जो परिवर्तन हुए, कविता उससे भी अछूती नहीं रही। आज की मंचीय कविताएं गैर बराबरी, अन्याय, शोषण, क्रूरता आदि के विरुद्ध उसके निरंतर संघर्षों की शाब्दिक अभिव्यक्ति क्यों नहीं बन पा रही है? वर्तमान कविताएं अपने बुनियादी सरोकारों और संवेदनाओं पर अब भी कायम है। आज कविता पहले की तुलना में अधिक गंभीर, विवेकवान हो गई है। काव्य वह वाक्य रचना है जिसमें चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिससे चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोयोगों का प्रभाव डाला जाता है। रस गंगाधर ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा है। अर्थ की रमणीयता के अंतर्गत शब्द की रमणीयता भी समझकर लोग इस लक्ष्य को स्वीकारते हैं। वर्तमान युग में काव्य का प्रयोग पद्मात्मक रचनाओं के लिए रूढ़ हो गया है तथा साहित्य में सभी विधाओं का आतंक होने लगा है। मंचीय कविताएं चुटकुलों से निकली बेहदी आवाजों में परिवर्तित होने लगी हैं। मंचीय कविताओं में अब उस पीढ़ी की उपस्थिति नगण्य सी हो चुकी है जो अन्य माध्यमों से आजीविका कमाते हुए साहित्य सेवा करते रहना चाहती थी। मंचीय कविता पुरातन काल से संप्रेषण की एक महत्वपूर्ण विधा है। कालिदास विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न थे। यह परंपरा मध्ययुगीन राज दरबारों में भी निरंतर चली आई। विद्यापति मिथिला के राज दरबार में थे। भक्ति काल में काव्य पाठ का क्षेत्र मंदिर बने। अष्टछाप के कवियों से सभी परिचित हैं। इसी काल में कविता संतों की वाणी ने जन साधारण तक जीवन मूल्य को संप्रेषित किया। बच्चन, नेपाली, अंचल, सुमन, नीरज आदि कवियों ने छायावाद का माधुर्य, पर्ण गीतों की मादकता, गले की मिठास आदि का ऐसा सम्मिश्रण किया कि श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते थे। कविताएं जीवन के सूत्र और सह क्षेत्रों के विरूपीकरण की वास्तविकता को कई प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क में खोलती चलती है, परंतु मंच पर यह प्रस्तुत नहीं हो पाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि हिंदी समाज अपने अनवसनात्मक और आत्म साक्षात्कार से बचने की प्रवृत्ति वाला समाज हो गया है और अपनी कलाओं, साहित्य तथा रचनाकारों के साथ उसका कोई गहरा अंतरंग और सृजनात्मक रिश्ता नहीं बचा है। ऐसे में यह अस्वाभाविक नहीं है कि अपनी प्रक्रिया में ही सामाजिक चरित्र का होने के कारण मंचीय कविता उस समाज में अपनी कोई विशिष्ट पहचान न बना पाए जिसकी सांस्कृतिक एवं संवेदनात्मक प्रक्रिया ही कुंठित हो गई हो। वर्तमान की स्थिति भिन्न है। हास्य व्यंग की सतही रचनाओं के कारण कवि सम्मेलनों की गिरावट हुई है। प्रसंग के अनुसार कविताओं की रचना न कर पाना और प्रस्तुति के सफल सोपानों तक अपनी कविता को न पहुंच पाना वर्तमान के मंच कवि की सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्हें प्रसंग अनुकूल और उचित शब्दों का प्रयोग करना नहीं आता, जो कि एक कवि के लिए परम आवश्यक है। एक अच्छे कवि में जो काव्य विवेक होना चाहिए, वे आज के मंच कवि में नहीं है। उसके लोकप्रिय होने की इच्छा ने उसके काम विवेक को मार दिया है। वर्तमान कवि सम्मेलनों में भीड़ तो जुटा रहा है, परंतु कवि सम्मेलनों को कविता से दूर ले जा रहे हैं। वह नाटकीय प्रस्तुति करके कविता को भांडपन की ओर ले जा रहा है। मंच पर मौलिकता का अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। श्रोताओं को हंसाने के लिए मंचीय कवि उसी परिहास को हर कवि सम्मेलनों में बार बार जन्म दे देते हैं। कुछ परिहास तो पहले से ही अन्य कवियों द्वारा रचे हुए होते हैं, उन्हें केवल दोहराना भर होता है। कविता को तो कवि से जोड़ा जा सकता है, परंतु इन परिहासों को किससे जोड़ा जाए, एक ही परिवार पर बार बार हंसना कठिन होता है। मंचीय कविता के गिरते स्तर से आहत हिंदी के कविता के प्रमुख स्तंभ गोपाल दास नीरज का कथन है कि मंचीय कविता का स्थान चुटकुलों ने तो ले लिया है और

के नाम पर व्यंग्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन की परंपरा के कवि गोपालदास नीरज के अनुसार मंच पर गीतों को पढ़ने वालों का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है। मंच पर गीतों के अच्छे प्रस्तोता पहले भी कम हुआ करते थे, परंतु वर्तमान तो कविता का मंच निम्न स्तर के स्थानीय कवियों और मस्खरों का जमावड़ा हो गया है। परिणाम स्वरूप अच्छे कवियों को सुनने के लिए श्रोताओं को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके लिए हम केवल कवियों को ही दोषी नहीं मान सकते, बल्कि श्रोताओं को भी इसके लिए दोषी मानना चाहिए, जो व्यंग्य के नाम पर मंच पर अपना स्थान बना चुके हैं, फुहड़ हास्य और चुटकुले नुमा हास्य को प्रोत्साहित करते हैं। वर्तमान की विषम परिस्थितियाँ और आज की विसंगतियों पर नजर रखती हुई कविताएं मंच पर स्थान नहीं पा रही हैं। नागरिक के मन की चिंताओं अभिव्यक्तियों को सहजता से अंकित करती कविताएं मंच प्रस्तुति में कम ही देखने को मिलती हैं। भाषाई गुंजन में सदी शाब्दिक आवृत्तियाँ मंच पर क्यों नहीं झलकती तैरती हैं, जो लंबे समय से भारतीय मानस के सचेत संवेदन में उमगती उभरती रही है। वर्तमान का मंच कवि नई प्रतीकों को तरलता से बुन सकने में भी सक्षम नहीं है। कविता की गूंज और गूंथ में माशलता और सुचिता एक साथ झिलमिलाती नहीं दिखती है। वर्तमान समय में कविता की दशा फुटपाथों पर से होकर मानो गुजर रही है। आज के समय में कवि को कविता की जीवंतता का मर्म सजोज कर रख पाना संघर्षपूर्ण हो गया है। इसका एक कारण मीडिया का गिरता हुआ स्तर भी है। जबकि प्रेस समाज के प्रति अपनी एक जवाबदेही सुनिश्चित करती है, ठीक वैसे ही जैसे एक कवि अपनी कविता की यथार्थ रूप में पढ़ना, समझना, समझाना, मंच के माध्यम से लोगों में जागरूकता, सत्य असत्य का बोध, अनुभूति जो लोगों में प्रतिपल जीवंत हो, ऐसा भाव जागृत करना है। यही कारण है कि कहा जाता है कि कवि कभी कभी मरता नहीं, उसकी पंक्ति सदैव वर्तमान में जीवंत रहती है। समय के परिदृश्य में कवि की कलम कभी तलवार का कार्य करती थी, तो वर्तमान में वही कलम चलने से पहले सोचती है। इसका कारण अभिव्यक्ति और कलम के मध्य एक रेखा खिंच गई है। वर्तमान समय में लोग अभिव्यक्ति के नाम पर भड़काऊ भाषण, हेट स्पीच, मौलिक शब्दों का चयन कर लयात्मक ध्वनि में बयानबाजी इत्यादि कविता और मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। वर्तमान में अपनी बात को समझाने में, सत्य को सत्य के रूप में प्रदर्शित करने में कवि

0: पर इस प्रकार के प्रश्न को जन्म देना कहाँ तक न्याय संगत है। वर्तमान कवि की उपलब्धि पुरस्कारों तक सीमित रह गई है, और यदि नहीं तो ज्ञान और कल्पना वर्तमान में कवियों में वह कल्पनाएं जो निराला जी, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेव वर्मा इत्यादि द्वारा कही गई हैं, उनका लोप हो गया है। अग्रिम पंक्ति में बैठने वाला कवि आज मंच की अंतिम पंक्ति में बैठने को विवश है। ईश्वर को न मानने वाले यहाँ तक मानते हैं कि रामायण और गीता भी एक कवि की कल्पना मात्र है। फिर क्यों अब वाल्मीकि, योग वशिष्ठ जैसे महाज्ञानी कवि की कल्पना अब की? क्योंकि यदि हम साहित्य की दृष्टि पर नजर डालें तो बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने मंचीय कविता को अमृतत्व की ओर से शिखर तक पहुंचाया है, किंतु वर्तमान समय में कवि की कल्पना विलुप्त होती दिखाई दे रही है। उस पर विद्वानों की दृष्टि होते हुए भी नयन चक्षु बंद किए हुए हैं। वर्तमान में विज्ञान युग में मंचीय कविता एक सीमित दायरे में सिमट कर रह गई है। आवश्यकता है उसे एक नई दिशा प्रदान करना।
1: विविधा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुभाष चंद्र की वार्ता, वर्तमान में काव्य मंचों की दशा और दिशा। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:55 और 40 सेकंड हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत के कार्यक्रम छाया गीत में, और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं राजवीर। श्रोताओं, कुछ गाने सिर्फ धुन नहीं होते हैं, वो एक पूरा दौर अपने आप में समेटे होते हैं। वो हमारी यादों के आंगन में लगी उस बेल की तरह होते हैं जो वक्त के साथ और हरी और घनी हो जाती है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम ऐसे ही खूबसूरत गीत से कर रहे हैं जिसको हमने लिया है फिल्म चोरी मेरा काम से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार, अमित कुमार और कंचन की, वर्मा मलिक का ये गीत है और धुन है कल्याण जी आनंद जी की। रिश्तों की धूप छाँव में एक नया रंग घोलते हैं, चलो आज पुरानी यादों की खिड़की को खोलते हैं। धड़कनें थम सी जाती हैं उस बीते हुए दौर को सुनकर जब कच्चे अंगूर की बेल से जज्बात बोलते हैं।

0: कहां ये है चूजा तू खरबूजा, ये है चूजा तू खरबूजा।
1: अरे वाह,
2: अरे जा,
1: अरे वाह,
2: अरे जा जा जा जा जा जा।
3: आजी छो

0: ख्याल है आपका?
1: मेरा या मेरे बाप का?
2: ए, ए, ए, बाप के बच्चे

0: है, मेरे रस्ते में ना आ।
1: मैं कहता हूँ तू हट जा।
0: ओ मेरे रस्ते में ना आ।
1: मैं कहता हूँ तू हट जा।
2: ए बूढ़े कबूतर,
1: क्या बात है पुत्र?
2: ए बूढ़े कबूतर,
1: क्या क्या क्या बात है पुत्र?
0: अगर मैं जोश दिखा दूंगा,
1: मैं तेरे होश उड़ा दूंगा।
0: तुझे तारे दिखा दूंगा,
1: मैं नानी याद करा दूंगा।
2: पिछके गाल तो देख,
1: तू अपना हाल तो देख।
0: अब मैंने कई खेल

चोरी मेरा काम। इस फिल्म में भी आपने सुना किशोर कुमार, अमित कुमार और कंचन को। वर्मा मलिक के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने। और लीजिए पेश है लता मंगेशकर, भूपेंद्र सिंह और साथियों की आवाज़ों में फिल्म ज्वेल थीफ का ये गीत। मजरूह का ये गीत है और संगीत है एचडी बर्मन का। कुछ राज मोहब्बत के छुपाए नहीं जाते, ये दिल के फसाने सुनाए नहीं जाते। महफिल में जो आई है तो हलचल मचेगी ही, वो राज हैं ऐसे जो दबाए नहीं जाते।

अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म घर में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले नज़र डाल लेते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती रात 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00 हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत के अंतर्गत शाम 7:32 पर सुनिएगा मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन। और अब एक नजर डाल लेते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। रेडियोस्कोपी नेशनल साइंस मैगजीन रात 9:30 पर और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा रात 10:00 हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अदबी दुनिया क्रम में कल शाम 7:50 पर कलाम शायर पेश करेंगे विजारत नबी। शाम 7:32 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा सनवर अली खां की गई चंद गजलें। विविधा के अंतर्गत शाम 6:45 पर आप सुनेंगे सुधा शर्मा की कहानी निर्णय। दलहन तिलहन का कृषि में महत्व, इस खास विषय पर प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र बघरा मुजफ्फरनगर डॉक्टर हंसराज सिंह से जितेंद्र सिंह की बातचीत हमारे किसान भाई सुनेंगे कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर। युवानी कार्यक्रम हमारे युवा श्रोता सुनेंगे कल शाम 5:15 पर। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में कल शाम 5:00 आपको जानकारी देंगे अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजना सांप्रदायिक सौहार्द पर संशोधित दिशा निर्देश के बारे में। दिन में 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत आप सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में हरियाणवी लोकगीत धरती गाती है। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा कल प्रातः 9:25 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे रविंद्र कुमार और समरपाल सिंह की गाई रागनी सूरज के साथ साथ। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होगा कल प्रातः 7:31 पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत की जनता को संबोधित मन की बात का 135वां संस्करण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे कल पूर्वाह्न 10:55 पर। फिल्मी संडे क्रम में कल दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे 1992 की फिल्म दीवाना की स्टोरी और चंद गीत। श्रोताओं के द्वारा भेजे गए पत्रों के उत्तर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र मिला में कल दोपहर 12:05 पर। बालवाटिका कार्यक्रम पेश किया जाएगा कल दिन में 1:15 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे लघु नाटिका बदलती किस्मत। प्रतिभागी होंगे सुभेंद्र सिंह, कुमुद सिंघल, दिव्यांशु, नंदिनी माहेश्वरी, दिव्यम कंडवाल, पार्थ, राशि त्यागी और सोहनलाल शर्मा। यह नाटिका अंकित सैनी के निर्देशन में तैयार की गई है और प्रस्तुतकर्ता है शोभित शर्मा। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में दो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में सम्मिलित हुए, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दो दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतमबुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 96 में बने नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्य प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रेल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में आज प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमी कंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहाँ बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीसीबी सर्किट के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा कि पहले इसे भारत आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए, तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और उद्यमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आज नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ग्रेट ट्रेड शो के चौथे संस्करण के कर्टन रेजर सेरेमनी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
3: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
0: कार्यक्रम को प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी संबोधित किए कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों आदर्शों की राजनीति अपनाकर शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की यात्रा सत्ता प्राप्त की यात्रा नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और समन्वय की बेहतरीन यात्रा है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
4: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रख करके बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य, आदर्श, ये संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित दो आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस दौरान बच्चों के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी मां होती है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला बनते हैं। इसके बाद उन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर शून्य से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में आज उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी के सघन चेकिंग जारी हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट पॉइंट्स नगर निगम की मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कल प्रयागराज में ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग एवं विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बिजली से संबंधित किसी भी समस्या अथवा शिकायत का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर

0: उन्हें तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि वर्षा काल को देखते हुए सभी नालों के समयबद्ध सफाई कर जल भराव की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाई जाए। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉ सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने 1 हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग से प्रतिवर्ष 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का वार्षिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई में आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2,478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए सम्मिलित। कहा, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:31:45 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोहन कुमार गुप्ता के गाए भजन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय रात के 8 बज रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत संध्या में, और आज का यह कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, राजवीर। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सन्यासी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और प्रेमनाथ की। हसरत जयपुरी का यह गीत है और संगीत है शंकर जयकिशन का। शामे फुरकत का अंधेरा गहरा होता गया, शामे फुरकत का अंधेरा गहरा होता गया, मेरा हर एक आंसू तेरी याद में बहता गया। वो शाम भी अजीब थी जब तुम जुदा हुए, हम आज तक उस अंधेरे से रिहा न हुए।

लता मंगेशकर और प्रेम नाथ को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सन्यासी में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आजाद देश के गुलाम, यह नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। समीर का लिखा यह गीत है और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। बहुत वक्त गंवा दिया रूठने मनाने में, बहुत वक्त गंवा दिया रूठने मनाने में, आओ फिर से खो जाएं एक दूजे के ज़माने में। दिल को थोड़ा सा साफ करके तो देखो, पुरानी बातें भूल कर ज़रा बात करके तो देखो।

0: आज़ाद देश के गुलाम। इस फिल्म में भी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ को। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगले गीत से पहले ये संदेश।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम का यह अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म अपनापन से। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आदमी महज एक मुसाफिर है इस जहान में, आदमी महज एक मुसाफिर है इस जहान में, कुछ दिन का बसेरा है इस किराए के मकान में। मंजिल की तलाश में उम्र गुजर जाती है, मंजिल की तलाश में उम्र गुजर जाती है, ये मुसाफिर ठहरता है तो जिंदगी ठहर जाती है। रास्ते बदलते रहें और सफर चलता रहा, इंसान मुसाफिर बनकर हर मोड़ पर ढलता रहा, हर मोड़ पर ढलता रहा।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अपनापन का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत जिसको हमने लिया है फिल्म मुक्ति से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। आरजू लखनवी का लिखा है गीत है और धुन है माल्य चक्रवर्ती की। तुम्हारी याद के साए हमें सोने नहीं देते, तुम्हारी यादों के साए हमें सोने नहीं देते, ये दिल के जख्म अब हमको रोने नहीं देते। सितम ये है कि तुम पास होकर भी दूर हो, सितम ये है कि तुम पास होकर भी दूर हो, और बेबसी ये है कि हम मिलने को मजबूर हैं। रात की तन्हाई में तुम्हारा ख्याल आता है, हसीं सितम तुम्हारा दिल पर तीर चलाता है।

फिल्म मुक्ति में अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को। आरजू लखनवी का लिखा एक गीत था और संगीत माल्य चक्रवर्ती का। और अब कार्यक्रम की अंतिम पेशकश फिल्म मेरा नाम जोकर से। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अपनी आवाज़ दी मुकेश ने। वो दिन भी क्या दिन थे जब तुम साथ हुआ करते थे, बिना बात के ही हम घंटों हंसा करते थे। जाने कहाँ खो गई वो मासूम सी मोहब्बत हमारी, अब तो बस यादों में बची है वो दुनिया प्यारी। गुजरा हुआ वो जमाना बहुत याद आता है, जब तुम्हारा मुस्कुराना इस दिल को भाता था।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या, ही आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात के 8:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एक ही फिल्म से में। और इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं राजवीर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हमारी आज की फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। इस फिल्म के लिए गीत लिखे हैं हसरत जयपुरी, अनु मलिक और देव कोहली ने। और इस फिल्म के गीतों को संगीत दिया अनु मलिक ने। और इस फिल्म के गीतों को अपनी आवाज़ें दी हैं अभिजीत, पूर्णिमा, अनु मलिक, अनुराधा पोडवाल, उदित नारायण और कुमार सानू ने। तो श्रोताओं लीजिए पेश है कार्यक्रम का यह पहला गीत उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी का ये गीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। और लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं अभिजीत और पूर्णिमा ने।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी के कुछ गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: सर फिरोजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत

0: व्यक्ति अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that the contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु कैंपगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कैंपेगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैंपेगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,900

0: newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
1: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोठी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया

0: स्किन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan reach semifinals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport.

0: मिनट पर 6.2 शिद्दत का जबरदस्त जलजला आया। जलजले के झटके भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान में महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा समेत शिमाली भारत के कई हिस्सों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा और जम्मू जिलों समेत मरकज के जेर इंतजाम कई इलाकों में लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। अहलकारों ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में साइंसदान संजय कुमार प्रजापति ने बताया कि यह जलजला अपनी नौयत के एतबार से मोतदिल था और इसके मरकज के नजदीक तवक्को है कि नुकसान भी काफी कम हुआ होगा।
1: की जो गहराई है वो 215 किलोमीटर है और ये भूकंप काबुल से लगभग 478 किलोमीटर उत्तर में है और श्रीनगर से 512 किलोमीटर पश्चिम में है और ये दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, और इसके झटके जो है दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश कई हिस्सों में महसूस किए गए और रिपोर्ट के पास इसकी तीव्रता थी 4 और इसकी गहराई अधिक होने के कारण ये रीजन में महसूस किए गए, लेकिन इसकी इंटेंसिटी 4 ही है तो इसकी क्षति होने की संभावना बहुत कम है।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज गर्मी की पेशगोई की है। दिल्ली में कल आरजी तौर पर मतला अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। US ओपन बैडमिंटन में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में टाइटन जिम में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में देविका सिहाग ने जापान की तीसरे दर्जे की खिलाड़ी रिको गुंजी को सीधे सेटों में 22-20, 21-19 से शिकस्त दी। कल सेमीफाइनल में उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से होगा। मर्दों के सिंगल्स में साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जोफू को 21-9, 12-21, 21-8 से शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल के लिए इस इम्कान को बरकरार रखा है कि फाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौम आजादी की तकरीबात में मेहमान आजादी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेज और दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्दबोध से मुतालिक मामलों के बाद अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और US ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है एक सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटीज, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है, उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट है। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कोश, उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं। अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है, और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी की उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है, बेड है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें, और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है ड्रॉप।

0: परन्टहुड, जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाहें भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और उसकी डेथ हो गई, तो उस घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
2: जी।
3: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
2: जी,
3: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
2: जी।
3: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहाँ पे साफ सुनाई दे रहा है, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
2: जी,
3: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
2: जी,
3: मोबाइल भी नहीं था
2: नहीं।
3: और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पे लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस टाइम
2: जी।
3: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित

0: होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि इस सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ।
1: जी जी।
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानने चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
3: जी।
4: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बात जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
2: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान, साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की। उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं।

0: औरतन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम पोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा, और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव, इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुँचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई

ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज की वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया. समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है. अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाए.

0: तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरू प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन अर्थात ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है, जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है।

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनीशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Taleem from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला, विलंबित रचना झपताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय बिगिंस हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री। ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप, विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक

0: हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and 2 of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defense Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defense Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year. The ministry said that these posts have selectively quoted an isolated portion of the speech to falsely imply that Mr. Singh claimed that no Indian soldier lost his life during Operation Sindoor. Explaining the context of the Defence Minister's remarks, the ministry said that at the time of Mr. Singh's address, a particularly persistent and dominant narrative had emerged in certain sections of the media and on social media claiming that Indian pilots had been lost during Operation Sindoor. The ministry said this narrative was entirely false, yet it was being amplified aggressively with the clear intent of diminishing the success of the operation and demoralizing public sentiment. The ministry said that it was in direct reference to this specific and mischievous narrative that the Defence Minister made the statement in question. Union Minister for Electronics and IT Ashwini Vaishnav and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath laid the foundation stone for two major electronics manufacturing projects worth 6,750 crore rupees in Jewar, Uttar Pradesh. Addressing the gathering, Mr. Vaishnav said that Jewar is poised to emerge as one of India's leading hubs for electronics and semiconductor manufacturing in the coming years. Explaining the significance of the project, the minister said that the facilities would manufacture advanced multi-layer printed circuit boards, PCBs, one of the most critical components of modern electronic devices. Ram Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned on moral grounds following the temple donation embezzlement case. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has officially acknowledged their resignations. Treasurer of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra today issued a statement on this issue. It says the resignations will be discussed in the next meeting. It also assured that the silver bricks and jewellery donated by devotees are accounted for. The trust said it is deeply saddened, hurt and extremely distressed by recent incidents at the Ayodhya Ram temple. It also confirmed that an FIR has been registered in the donation-related case based on the SIT's interim report with legal proceedings underway. The fragile ceasefire brokered 2 weeks ago to end the four-month conflict in West Asia is under mounting pressure after fresh retaliatory strikes between the United States and Iran over the past 48 hours. The latest escalation began on Thursday with an Iranian attack on a commercial vessel in the Strait of Hormuz, prompting a U.S. response. Both sides accuse each other of violating the interim agreement, raising fears for ongoing diplomatic efforts. Bahrain reported a drone attack today, calling it a flagrant violation of its sovereignty, while a strike was reported near Erbil in northern Iraq. In southern Lebanon, an Israeli drone strike hit the Nabatea area a day after Israel and Lebanon signed a U.S. brokered framework for Israeli withdrawal and restoring Lebanese state authority. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in U.S. tonight. In another Group E fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in U.S. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं. इस समय रात्रि के 11:10 हो रहे हैं. हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न हो रहे हैं. हमारी अगली प्रसारण सभा में कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी. तब तक के लिए हमें दीजिएगा